ओडा कूप गोज खिन काढ़ै, जो ओडा कूप गोज खिन काढ़ै त्यों सतगुर वस्त लहाइय। जिने ऐसा सतगुर साध ना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाइय। जन्म पदार्थ

कुबजा उधरी अंगुष्ट तार बिदर उधार्यो दास्त पहाए रे मन तू पी हर त्याए।

सहज अवल तूड़मणि गाडी चालती पीछे तिनका लेकर हांकती। जैसे पनकत थ्रू टिट हांकती सर धोवन चाली लाडली रहाओ तो भी तो वह बिरह बिराता

निस्बासर नखयत्र बिनासी रव ससियर बेनाधा गिर बसधा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलाधा एक साध बचन अटलाधा।

ਲਾਏ ਸੋ ਸੱਚ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਨਾਹੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਵਡਾਈ।

तीर्थ अड़सठ मज्जन नाई सतसंगत की तूर परी उड़ नेत्री सतसंगत की तूर परी उड़ नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहा जाहर नवी

हम हाट बिहाजे जिस हर हर कृपा करै हर जन को मिलिया सुख पाइये सब दुर्मत मैल हरै हर जन को हर भूख लगानी जन तृप्त है जा हर गुण बिचरै हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरै जिन एह प्रीत लाई सो जानै कह जानै जिस मन धरै जन नानक हर देख सुख पावै सब तन की भूख टरै मल्हार महला चौथा।

सतगुर हर हर नाम दृढ़ावै, हर बोलहो गुर के सिख मेरे भाई, हर पौजल जगत त्रावै रहाओ, जो गुर कहो जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पहावै, हर की सेवा सतगुर पूजहो, कर कृपा आप तरावै, परम भूले अज्ञानी अंधले।

जिन उर धारियो हर रस कर साक हर के संत मिले हर मिलिया जैसे गऊ देख बशराक हर के संत जना

ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गो। जो जो भगत होए सो पूजहो परमन परम चुकावे गो। जात न जात देख मत परम हो सुख जन।

फिर शाहा वड पुरख स्वामी रहाओ छल नागन स्यो मेरी टूटन होई गुर कहया एह झूठी तोही मुख मीठी खाई कौराए अमृत नाम मन रहया अगहाए।

सार्थक है। साध संग स्नेह सत्यं सुख्यं बसंत नानक है। मिथ्यंत देहं खीणंत बलनं बरधंत जरुआ

मनोरथ कोए ना पूरे चाले ऊठ निराश। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। इत उत कत है नंड।

ਸਤ ਸਤ ਹਰ ਸਤ ਸਤ ਸੱਤੇ ਸਤ ਪਣੀਐ ਦੂਸਰਿਆਨ ਨਾ ਅਵਰ ਪੁਰਖ ਪਉ ਰਾਤਨ ਸੁਣੀਐ।

बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पहावै देहो दर्श मन चाओ भगत इहो मन ठहरावै बलियो चिराग अंध्यार मह सब कल उधरी एक नाम धर्म प्रगट सब

पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरहो अगम अपार हो श्री पतनाथ शरण नानक जन श्री पतनाथ।

जिन हुक्म सब सृष्ट सवारी। ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाण्यो, जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माण्यो।

तैं अटल अमर पद पायो। संतोख सरोवर बसै अमै रस रसन प्रकाशै, मिलत शांत उपजै दुरत दूरंतर नासै। सुख सागर पायो दिनत हर

गुर अमर गुरु श्री सात कल युग राखी पात अगहन अगन देखत गात चरण कवल जास गुर अमर गुरु।

शब्द गुर श्रवण है सुनियो, बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पण्यो। लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद

पुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस तेनेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे।

संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर। फुन गुरु जल बिमल अथा मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर। सदा निर्वैर निरंकार निरपहो जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर। मुग्ध मन भ्रमत जहो।

गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध सुमत सुमारन कौ फुन त्रम तुजा फहरंत सदा अघ पुंज त्रंग निवारण कौ मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु।

खेल गूढ़ो कियो हर राय संतोख समाचर्यो विमल बुद्ध सतगुर समाणो आजोनी संभव्यो।

सतगुर मिलाए होमै तजै विकार हर नामा जप सुख पाया जन नानक शब्द विचार। बिन सतगुर

जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी।

तेर के अग्गे रखी है जित दिसै दरबार, मोह के बोलन बोली है जित सुन करे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवे जानिए सब आपे सच्यार, खापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सो।

वेदं गुरमुख रहा समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा इक दे बुझाई सबना जिया का।

चार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार पर ये हाथ पैर तन देहे पानी तो तै उतरस के मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लिये ओ तोए पर ये मत पापा के संग ओ तो पे नावे के रंग पुन्नी पापी आखण ना है कर कर करना लिख ले जाओ आपे बीज आपे ही खाओ नानक हुक्मी आवो जाओ तीरथ तप दया दत दान जे को पावे तिलका मान सुनिया मनिया मन कीता भाव अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं ना ही कोए विण गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आस बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन खिच कवन वार कवन से रुती महा कवन जित हो आकार वेल न पाया पंडती जे हो वै लेख पुराण वक्त न पायो काजिया जे लिखन लेख पुराण चित वार न जोगी जाने रुत मह न कोई जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई किव कर आखां किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखन सा

नानक जे को आपो जाने अगै गया ना सो है। पाताल पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन इकवात सैस अठारे कहन कतेबा अपनू इक तात लेखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। साला ही साला है एती सुरत न पाया नदियां अत्ते वाहा पवे समुंद ना जानिए समुंद सहा सुल्तान गिरहा से ती मालकान कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो ना विसरे अंत न सिखती कहन न अंत अंत ना करने देन ना अंत अंत ना देखन सुनन ना अंत अंत ना जापे क्या मन मंत अंत ना जापे कीता आकार अंत ना जापे पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो।

ऊंचा नाव एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना समाए, केते मंगे जोद अप

ताके रूप ना कथने जाहे, ना ओहे मरे ना ठागे जाहे। जिनके राम वसे मन माहे, तिथे भगत वसे के लो, करें आनंद सच्चा मन सोए। सत खंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल। तिथे खंड मंडल वर पांड, जे को कथे तांत ना अंत। तिथे लो लो आकार, जिव जिव हुकम तिवे स्वीकार। वेखे विदसे कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। जत पहाड़ा तीर सुनियार, एरन मत वेद हथियार। पाओ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत चित ताल। करिए शब्द सची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक पवन गुरु पानी पिता, माता तरस महत। दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत। चंगियाया बुरियाया वाचे तर्म हदूर। करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ते आया, गए मशक्कत काल। नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। सोदर राग आ

दावन सुदनो पवन पानी बैसंतर दावे राजा तरम द्वारे। गावन सुदनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख तरम विचारे। गावन सुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन तेरे सदा सवारे। गावन सुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दरनाले। गावन सुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन सुदनो साद विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मनमोहन सुर्ग मच पयाले। गावन तुदनो रतन उपाय तेरे अठ तीरथ नाले। गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे धारे। तेई तुदनो गावन जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले। होर के ते तुदनो गावन से मैं चितना आमन नानक क्या बिचारे। सोई सोई सदा सत साहेब साचा साची नाई है भी होती जाए न जाती रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाय। कर कर देखे कीता अपना ज्योतिष दी वड्याई। ज्योतिष भावे सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई। सो पाता हो सा पत साहिब नानक रहन जाई। आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोए केवट वड्डा दिशा होए। कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए। वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवट चीरा रहा। सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई कह ना जाई तेरी तिलवड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया। तुद में सिद्धि किने न पाया कर्म मिले ना ही ठाक रहाया। आखन वाला

पाई जी तुद आपे सृज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जन होई। आसा मैला चौथा तू करता सत्यार मैं।

अवर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवर पहले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतक मूर मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हूं जति पति नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी सरणा, जिनको नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम, संग जाम लाग पव जल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया के, रहाओ जप तप संयम तर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हम

नित नित जियड़े संभालियन, देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवे, तिस दाते कौन सुमार। संबत साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल, देवो सज्जन आशीषड़िया, जो होवे साहिब त्यों मेल।

काम क्रोध नगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडा है। पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर दंडौत पुन वड्डा है। रहाओ सातक हर रस साध न जानिया तिन अंतर हो मैं कंडा है। ज्यो ज्यो चले चुभे दुख पावे जम काल सह सिल डंडा है। हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा है। अविनाशी पुरुष पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है। रागौड़ी पूर्वी मैला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला। इहां खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला। औद कटे दिन सुरैनारे मन गुरु मिल काज सवारे। रहाओ ए संसार विकार संसे में तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे एहो रस। अकथ कथा तिन जानी जा को आए सोई बिहाजो हर गुरते मने बसेरा। निज कर महल पाव

रंग पसाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे ना सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद आखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे ना सुल्तान होवा मेल लश

चंद सूरज दोई गुफे न देखा, सुपने सौन न खाओ, पी तेरी कीमत ना पवे, हौ केवड आखा नाओ। साचा निरंकार निज काए, सुन सुन आखन आखना, जे पावे करे तमाए, रहाओ कुसा कटिया।

केवड आखानाओ। पंखी होए कै जे पवा सै आसमानी जाओ, नदरी किसे ना आवो ना किस पिया न खाओ। पी तेरी कीमत ना पवे हौ केवड आखानाओ। नानक कागज लखमणा पढ़ पढ़ की चै पाओ, मस्तू तोट ना आवई।

लेखै बोलन बोलना, लेखै खाना खाओ, लेखै वाट चलाइया, लेखै सुन वे खाओ, लेखै साल आइए पढ़े के पुछन जाओ। बाबा माया रचना।

रोवन वाले जेतड़े सब बन्ने पंड पराल, सबको आखे बहुत बहुत काट ना आखे कोए, कीमत किने ना पाया कहन ना वड्डा होए, साचा साहिब।

पर निंदा परमल मुखसुदी अगन क्रोध चंडाल रस तस आप सलाहना ए कर्म मेरे करतार। बाबा बोलिए पत होए उत्तम से डर उत्तम कहिए नीच कर्म बहरोए रहाओ। रस सोयना रस रूपा कामण।

कह कच नाम निवास जित बोले पत पाये सो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना सुन मूरख मन अजान जो तिस पावे से पले होर के कहन वखान तिन मत तिन पत तिन तन पल्ले जिन हृदय रहा समाए तिन का क्या सालाना अवर स्वाल्यो काए नानक नदरी बाहरे राचे दान ननाए श्री राग महला पहला अमल गलोला कूड़ का जित्ता देवन हार मत्ती मरण विसारिया खुशी की ती दिन चार सच मिलिया तिन सोफिया राखन को दरबार नानक साचे को सत जान जित सेवे सुख पाये तेरी दरगह चले मान रहाओ सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा

तामन खीवा जानिए जा मैली पाए था नाव नीर चंगे आईया सत परमल तनवास ता मुख हो वै उजला लख दासी इक दात दुख तिसे पै आखिए सुख जिसे ही पास सो क्यों मनो विसारी है जाके जी प्राण तिस विण सब अपवित्र है जेता पैनन खान होर गल्ला।

पैनन मन रता सुपेदी सतदान नीली स्याही कदा करनी तैरन पैर त्यान कमर बंद संतोष।

कमान सांग तेग बंद गुण तात वाजा ने जा पक्षियों प्रगट कर्म तेरा मेरी जात बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर जित चढ़े तन पीड़िए मन में चले विकार रहाओ कर मंदर खुशी नाम की नजर तेरी परवार हुक्म सोई तुद पावसी होर आखन बहुत अपार नानक सच्चा पाप सा पूछ ना करे विचार बाबा होर सोना खुशी कुआर जित सुत्ते

तात मिले फुन तात कहो सुस्ती सुस्त समाए, लाल गुलाल गह बरा सच्चा रंग चढ़ाओ, सच मिले संतोषिया हर जप एक।

पार, गुरुमुख मन समझाइए आत्म राम विचार, त्रिविद कर्म कमाइए आस अंदेशा होए, क्यों गुरु बिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिले सुख होए, निज कर मैल पछानिए नदर करे मल तोए।

आओ आप सुजान ना पुल्लई सच्चा वद किरसान पहला तरती साध के सच नाम दे दान नौनिद उपजे नाम एक कर्म पवे निशान गुर को जान ना जानई क्या तिस चज अचार अंधले नाम विसारिया मनमुख अंध गुबार आवन जान न चुकई मर जन्मे होए खुआर चंदन मोल अनाया कुंगू मांग संदूर चोआ चंदन बहु कना पाना नाल कपूर जे तन कंत ना भावई ता सब अडंबर कूर सब रस पोगन बाद है सब सिदार विकार जब लग शब्द ना पेजी है क्यों सो है गुरुद्वार नानक तन

निरोध कर्म मिले सच पाए गुरुमुख सदा निरोध सच्ची कार सच मिले गुरमत पल्ले पाए सुर नर जमे ना मरे ना आवे ना जाए नानक दर प्रधान सो दर्दे पैदा जाए। श्री राग महला पहला। तन जल बल माटी भया मन माया मोह मनूर

निर्मल मैला ना पिया शब्द रते पत होए। इन मन साथ संतोखिया नदर करे तिस माहे

हर गुर सरवर सेव तू पावे दरगे मान राव। राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर तन जान। सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान। नित एनस हर प्रभु।

sou para você de patar. चारे अग्न निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रगाशया अमृत पड़या अघाए नानक सतगुर मीत कर सच पावे दरगे जाए श्री राग महला पहला हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कसवटी लाइए तुलिए पूरे तोल कीमत किने न पाई है रिद मानक मोल।

मन में माणिक लाल नाम रतन पदार्थ हीर सच वखर तन नाम है कट कट गहर गंभीर नानक गुरमुख पाई है दया करे हर हीर श्री राग महला पहला पर में पाए ना विजवे जो पवे दिसंतर देश अंतर मैल ना

मिल सत संगत हर पाए, गुरमुख हर निविलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल सलल समाए। जिन हर हर नाम न चेत्यो, सो अवगुण आवे जाए, जिस सतगुरु पुरख न पेट्यो, सो पाउ जल पचे पचाए। ए मान के जियो निर्मोल है, क्यों कौडी बदले जाए। जिना सतगुरु रस

तैसी वस्त विसाहिए, जैसी निभ नाल अग्गे साव सुजान है, लैसी वस्त समाल। पाई रे राम कहो चित लाए, हर जस वखर।

आओ ऐब तन चुकड़ो ए मन मिलको कमल की सार नहीं मूल पाई। पौर उस्ताद नित पाखिया बोले क्यों बूझे जान है बुझाई। आखन सुनना पौन की बाणी ए मन रत्ता माया खसम की नजर दिले पसंदे जिनी कर एक तियाया। ती कर रखे पन कर साथी नाव शैतान मत कट जाए नानक आखे।

आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंझ में आनो आपे वे सुने आपे ही कुदरत करे जहानो ज्योतिष पावे नानका हुक्म सोई।

आए। सतगुर मन कामना तीर्थ है, उसनो दे बुझाए। मन चिंदिया वर पावना, जो इच्छा सो फल पाए। नाउ पिलाई है।

सो गुरुमुख नाम समाए। पर पर पंगत जोत की वाद करें विचार, मत बुद्ध पवी न बुझई अंतर लोभ विकार। लक्ष 84 परम दे परम प्रम होए खुआर।

आप गवाए, शब्द मिले ताहर मिले, सेवा पवे सब खाए, पारस परसे पारस होए, ज्योति ज्योत समाए, जिनको पूरब लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। मन पुखा पुखा मत करें,

गुरमुख नाम से आया विच्चों आप गवाए ओए अंदरों बारों निर्मले सच्चे सच समाए नानक आए से परवान है जिन गुरमति हर प्याए श्री राग महला तीजा हर पगता हर तन रास है गुर पूछ करे वापार हर नाम सलाहन सला सदा वखर हर नाम आधार गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया हर पगता अतुट पंडार ताई रे इस मन को समझाए ए मन आलस प्या करे गुरमुख नाम ते आए रहाओ हर पगत हर का प्यार है जे गुरमुख करे विचार ताखंड पगत न हो वही दुबदा बोल खुआर सो जन लाया नार ले जिस अंतर विवेक विचार सो सेवक हर आती है।

नानक गुरमुख हर पाया सदा हर नाम समाए। श्री राग महला तीजा सुख सागर हर नाम है गुरमुख पाया जाए। अंदिन नाम त्याये सहजे नाम समाए। अंदर रचे हर सच सिओ रसना हर गुण गाए। पाई रे जग दुखिया दूजे भाए गुर सरनाई सुख लहे। अंदिन नाम त्याये रहाओ साचे मैल ना ला गई मन निर्मल हर त्याये। गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञान अंधेरा जाए। मन मुख मैले मल परे हों मैं तृष्णा विकार। बिन शब्द मैल ना उतरे मर जमे हुए खुआर। तातुर बाजी पलस रहे ना उर्वार न पार। गुरमुख जप तप संजमे हर के नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याये एक।

पाई रे गुरमुखर नाम से आए, नाम निधान सद मन वसै, महली पावे थाओ रहाओ, मन मुख मन तन अंध है, तिसनो ठौर न ठाओ, बहु जोनी पौंदा फिरे, ज्यों सुन्ये कर काओ, गुरमति कट चाओ।

कर कृपा में लायन हर नाम वस्या मन आए पोते जिन कै पुन है तिन सत संगत में लाए पाई रे गुरमत साच रहाओ साचो साच कमावना।

आए लाहा हर हर नाम मिले सहजे नाम समाए बिन गुर महल ना पाईए नाम ना प्राप्त होए ऐसा सतगुर लोड़ लहो जिद्दू पाईए सच सोए असुर संगारे सुख वसे जो तिस पावे सो होए जेहा सतगुर कर जानिया ते हो जेहा सुख होए एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए नानक एक जो

अपना धर्म गवावे बूझे नाही अंधन दुख विहानी मन मुख अंध न चेत ही डूब मोए बिन पानी मन रे सदा पजो हर सरनाई गुर का शब्द अंतर वसे ता हर विसर न जाई रहाओ इहो शरीर माया का पुतला विच हो मैं दुष्टि पाई आवन जाना जम्मन मरना मन मुख पत गवाई सतगुर सेव सदा सुख पाया ज्योति ज्योत मिलाई सतगुर की सेवा अत सुखाली जो इच्छे सो फल पाए जत सत तप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाए सदा आनंद रहे दिन राती मिल प्रीतम सुख पाए जो सतगुर की शरणागति हौं तिनकै बल जा।

पाई रे, गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई है, जे लोचे सब कोए रहाओ, लख चौरासी फेर पया, कामन दूजे भाए।

सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निदान मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसै मन तन निर्मल होए रहाओ कर कृपा कर आया आपे मिलिया आए गुर शब्दी सालाई है रंगे सह सुवाए सच्चे सच समाया मिल रहे न बिछड़ जाए जो किछ करना सो कर रहा अवर न करना जाए चिरी विछुन्ने मेलियन सतगुर पन्ने पाए आपे कार कराए सी।

अंत ना पाया जाए, कतनी बदनी ना पाई है, हों मैं विच्चों जाए, सतगुर मिले है, सद पैर चै, आप बसे मने आए, पाई रे गुरमुख बूझे कोए, बिन बूझे कर्म कमावणे,

देवन वाले के हाथ दात है, गुरु द्वारे पाए, जेहा की तुन तेहा हुआ, जेहे कर्म कमाए, जात सत संजम नाम है।

काया सादै उर्ज तप करे विच्चों होमे न जाए अध्यात्म कर्म जे करे नाम न कभी पाए गुर कै सबद जीवत मरे हर नाम वसै मन आए सुन मन मेरे पाच सतगुर सरणा गुर प्रसादी छुट्टी है बिख पवजल सबद गुर तरणा रहाओ त्रै गुण सबा तात है दूजा

मारे पंडित पढ़े बंधन मोह बाधा ने बूझे बिखिया प्यार सतगुर मिले तृप्ति छूटे चौथे पद मुक्त द्वार गुरते मार्ग पा

गुर पाये हर नामो दे दृढ़ाए, बिन गुर किने न पायो बिरथा जन्म गवाए, मन मुख कर्म कमावणे दरगह मिले सजाए, मन रे दूजा पाओ चुकाए, अंतर तेरे हर वसे गुर सेवा सुख पाए, रहाओ सच बाणी सच शब्द है जा सच तरे प्यार, हर का नाम मन वसे हो में क्रोध निवार, मन निर्मल नाम से आये ता पाए मोख द्वार, हो में विच जग बिन सदा।

समाए। शब्द मने गुरु पाईए विच्चों आप गवाए, आम दिन भगत करे सदा साचे की लिवलाए, नाम पदार्थ मन वसे।

विचार। सतगुर सेव मन निर्मला हौ मैं तज विकार, आप छोड़ जीवत मरे गुर के शब्द विचार। तंदा तावत रह गए लागा साच प्यार, सच रते मुख उजले तित साचे दरबार। सतगुर पुरख ना मन्यो शब्द ना लगो प्यार, इस्नान दान जेता करें दूजे पाए खुआर। हर जियो अपनी कृपा करें ता लागे नाम प्यार, नानक नाम समाल तू गुर कह हेत अपार। श्री राज महला तीजा। किस हो सेवी क्या जप करी सतगुर पूछो जाए, सतगुर का पाना मन लई विच्चों आप गवाए। एहा सेवा चाकरी नाम वसै मन आए, नामे ही ते सुख पाइए।

आया त्यों जाए। मनमुख जन्म बिरथा गया क्या मोह देसी जाए। सब किछ आपे आप है हौं मैं विच कहन ना जाए। गुर कै शब्द पछाणिए दुख हौं मैं विचों गवाए। सतगुर सेवन आपना हौं तिन कै लागू पाए। नानक दर सच्चै सच्यार है हौं तिन बलिहारे जाओ। श्री राग महला तीजा। जे वेला वक्त विचारिए ता कित वेला भगत।

मन तन शीतल सास्यों सास न बिरथा कोए। मेरे मन हर का नाम ध्याए, साची भगत तासी है जा हर वसे मन आए। रहाओ सहजे खेती राही है, सच नाम बीज पाए।

अपना पाओ तिन पायोन जिन गुरु का शब्द विचार सत संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार दुबदा मैल चुकायन हर राख्या उरदार सच्ची बाणी सच मन सच्चे नाल प्यार मन मेरे हों मैं मैल पर नाल हर निर्मल सदा सोना शब्द सवारण हार रहाओ सच्चे शब्द मन मोहया प्रभ आपे लय मिलाए अंधन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाए ज्योति हु प्रभ जापदा बिन सतगुरु बूझ न पाए जिनको पूरब लिखिया सतगुरु पेटिया तिन आए बिन नामे सब डुमणी दूजे पाए खुआए तिस बिन कड़ी ना जीवदी दुखी रहन विहाए परम पुलाना अंदुला।

जिना सच नाम आधार गुर शब्दी सच पाया दुख निवारण हार सदा सदा साचे गुण गावे साचे नाए प्यार कृपा करके अपनी दितोन भगत पंडार मन रे सदा आनंद गुण गाए सच्ची बाणी हर पाये हर स्यों रह समाए रहाओ सच्ची भगती मन लाल थिया रत्ता सह सुवाए गुर शब्दी मन मोहया कहना कछु न जाए जेवा रत्ती शब्द सच्चे अमृत पीवे रस गुण गाए गुरमुख एहो रंग पाये जिसनो कृपा करे रजाए संसार एहो संसार है सुतिया रहन विहाए एक अपने पाने कड लयन आपे लेन मिलाए आपे ही आप मन वस्या माया मोह चुकाए आप वडाई दितियन गुरमुख दे बुझाए सबना का दाता एक है पुलिया ले समझाए एक आपे आप खुआयन दूजे छड़ियन लाए गुरमती हर पाई है।

गुर शब्दी मन रंगिया रसना प्रेम प्यार बिन सतगुर किने न पायो कर वेखो मन विचार मन मुख मैल न उतरे जिचर गुर शब्द ना करे प्यार मन मेरे सतगुर के पाने चल निज कर वसे अमृत पीवे ता सुख लै महल रहाओ अवगुणवंती गुण को नहीं बैन न मिले हदूर मन मुख शब्द न जाने अवगुण सो प्रभ दूर जिन्नी सच पछाणिया सच रते भरपूर गुर शब्दी मन वेदिया प्रभ मिलिया आप हदूर आपे रंगन रंगियोन शब्दे लयोन मिलाए सच्चा रंग ना उतरे जो सच रते लिवलाए चारे कुंडा पव थके मन मुख बूझ न

मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा होए, सच खटना सच रास है सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना बिछड़े नानक गुरमुख होए। श्री राग महला तीजा, आपे कारण करता करे सृष्ट देखे आप उपाय, सब एको एक वर्तदा अलख ना लखिया जाए, आपे प्रभु दयाल है आपे दे बुझाए, गुरमति सद मन वस्या सच रहे लिवलाए, मन मेरे गुर की मन लैर जाए, मन तन शीतल सब थी है नाम वसे मन आए, रहाओ जिन कर कारण तारिया सोई सार करे, गुर के शब्द पछाणिए जा आपे नदर करे, से जन शब्दे सोहणे।

तिना सुखे सुख विहाए। ज्ञान विहूनी पिर मुतिया पिरम न पाया जाए, अज्ञान मती अंधेर है बिन पिर देखे पुख ना जाए।

से सैया सुहागणी जिनको नदर करे खसम पछाणे अपना तन मन आगे दे कारवार पाया अपना हों में दूर करे नानक सोभावंतिया सुहागणी अंदिन भगत करे श्री राग महला तीजा एक पिर रावे अपना हों कै

पाए। अंदिन रावे फिर अपना सहजे सच समाए। राव शब्द रतिया सुहागणी सच्चे शब्द सिगार। हर वर पायन कर अपने गुर के हेत प्यार। सेज सुहावी हर रंग रवे भगत परे पंडार। सो प्रभ प्रीतम मन वसे जे सबसे दे आधार। फिर सालाहन अपना तिनके हो सद बलिहारे।

ती नाम सलाही है, दूजा अवर न कोए रहाओ। धर्म राय नो हुक्म है, बह सच्चा धर्म विचार। दूजे पाए दुष्ट आत्मा, ओ तेरी सरकार। अध्यात्मी हर गुण तास, मन जपे एक मुरार। तिनकी सेवा धर्म राय करे, तन सवारन हार। मन के विकार मन तजे, मन चूके मोह अभिमान। आत्म राम पछाणिया, सहजे नाम समान। बिन सतगुरु मुक्त ना पाये, मन मुख फिरे दीवान। शब्द नाची ने कथनी बदनी करे, बिख्या माए समान। सब किछ आपे आप है, दूजा अवर ना कोए। ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जा आप बुलाए सोए। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। नानक नाम समाल तू, जित सेवे सुख होए। श्री राग महला तीजा। जग हो मैं मैल दुख पाया, मल लागी दूजे भाए। मल हो मैं तोती किवे ना उतरे, जेसो तीर्थ नाए। बहुविध कर्म कमाओ।

गुर शरण आवे ता निर्मल होए। मनमुख हर हर कर थके मैल न सकी तोए। रहाओ मन मैले भगत ना हो वही नाम ना पाया जाए। मनमुख मैले मैले मोए जासन पत गवाए। गुर प्रसादी मन वसे मल हो में जाए समाए। ज्यों अंधेरे दीपक बालिए त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए।

रंग ना होए, कूड़ कपट किने न पायो, जो बीजे खावे सोए, सबना तेरी आस प्रभ, सब जी तेरे तू रास, प्रभ तुद्दो खाली को नहीं, दर गुरमुखा नो सावास, बिख पौजल डुब दे कड ले, जन नानक की अरदास, श्री राग महला चौथा, नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिग जीवास, कोई गुरुमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभ गुणतास, हों तिस विटो चौखनी है मैं नाम करे परगास, मेरे प्रीतमा हों जीवा नाम ते आए, बिन नामे जीवन ना थी है, मेरे सतगुरु नाम दृढ़ाए, रहाओ नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास, सतगुरु सेवे लग्या कड रतन देवे परगास, तन वड पागी वड पागिया जो आए मिले गुरपास, जिना सतगुरु पुरख ना पेटियो से पागहीन बस काल, ओए फिर जोन पवाइए विच विस्ता कर विकराल, ओना पास दुआस ना पिटिए जिन अंसर क्रोध चंडाल, सतगुरु पुरख अमृत सर वड पागी नावे आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए, जन नानक उत्तम पद पाया सतगुरु की निवलाए, श्री राग महला चौथा, गुण गावा गुण विथरा गुण बोली मेरी माए, गुरमुख सज्जन गुण कारिया मिल सज्जन हर गुण गाए, हीरे हीर मिल बेदिया रंग चलू लेनाए, मेरे गोविंदा गुण गावा त्रिपत मन होए, अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मिलावे सोए, रहाओ मन रंगो वड पागियो गुर तुठा करे पसाओ, गुर नाम दृढ़ाए रंग स्यो हौ सतगुर के बल जाओ, बिन सतगुर हर नाम न लब्बई लख कोटि कर्म कमाओ, बिन पागा सतगुर नाम मिले कर बैठिया निकट नित पास, अंतर अज्ञान दुख परम है विच पड़दा दूर पयास, बिन सतगुर पेटे कंचन नासिए मन मुख लो बूढ़ा बेड़ी पास, सतगुर बोहित हर नाम है कित बिद चढ़िया जाए, सतगुर के पाणे जो चले विच बोहित बैठा आए, तन तन वड पागी नानका जिना सतगुर ले मिलाए, श्री राग महला चौथा, हों पंथ दसाई नित खड़ी कोई प्रभ दसे तिन जाओ, जिनी मेरा प्यारा रावया तिन पीछे लाग फिराओ, कर मिन्नत कर जोदड़ी मैं प्रभ मिलने का चाओ, मेरे भाई जना कोई मोको हर प्रभ मेल मिलाए, हों सतगुरु विटों वारिया जिन हर प्रभ दिया।

सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोए बिन पागा दर्शन ना थिए पागहीन बैरोए जो हर प्रभु पाना सोचिया तुर लिखिया ना मिटे कोए आपे सतगुर आप हर आपे मेल मिलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जलें समाए। श्री राग महला चौथा। रस अमृत नाम रस अतपला कित बिद मिले रस खाए जाए पुछो सुहागणी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभु आए ओए वे परवा ना बोलनी हौं मल मल तो वा तिन पाए पाई रे मिर सज्जन हर गुण सार।

सतगुर वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए सेवड़ पागी वड़ जानिए जिन हर रस खादा गुर पाए एहो हर रस वन तिन सबत है पाग हीन नहीं खाए बिन सतगुर पल्ले ना पवे मन मुख रहे बिल लाए ओए सतगुर आ गए ना निवे ओना अंतर क्रोध बलाए हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए सब तन मन हरिया होया नानक हर वसिया मन सोए श्री राग महला चौथा दिन चढ़े फिर आठवें रैन सवाई जाए आव कटे नर न बुझे नित मूसा लाज चुकाए गुड़ मिठा माया पसरिया मन मुख लग माखी पचै पचाए पाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोई ना होए रहाओ गुरमत हर लिव उबरे अलिपत रहे सरनाए ओनी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए गुरमुख दर गए मनिए हर आप ले गल लाए गुरमुखानो पंथ प्रगटा दर ठाक न कोई पाए हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए अनहद तुनी दर वजदे दर सच्चे शोभा पाए जिनी गुरमुख नाम सलाया तिना सबको कहे सवा।

रस भोगें खुशिया करें माने रंग अपार बोध करें फुरमाइसी वरते हुए अपार करता चितना आवई मन मुख अंध गवार मेरे मन सुखदाता हर सोए गुर प्रसादी पाये कर्म प्राप्त होए रहाओ कपड़ भोग लपटाया सोयना रूपा खाक हैवर गैवर बहुरंगे किए रथ अथाक किसी चित न पावही।

जिसनो तू पतियाएदा सोसन तुझे अनित अहंकार करे अहंकारिया व्याप्या मन की मत तिन प्रभ आप पुलाया ना तिस जात ना पत सतगुर पुरख मिलाया इको सज्जन सोए हर जन का राखा एक है क्या मानस हो मैं रोए जो हर जन पावे सो करे दर फेर ना पावे कोए नानक रता रंग हर सब जग में चानन होए श्री राज महला पंजवा मन विलास बहु रंकना दृष्ट पूल खुशिया छत्रतार बादशाहियां विच सहसे परिया पाई रे सुख साध संग पाया लिखिया लेख तिन पुरख विदाते दुख सहसा मिट गया रहाओ जेते थान सनंतरा तेते पावे आया तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परया हुक्म चलाए निसंग होए वरते अफरिया सबको वसगत कर लयोन बिन नावे खाक रलिया कोट तेपी सेवका सिद्ध साधक दर खरिया गिरमबारी वड साहेबी सब नानक सुपंथिया श्री राग महला पंजवा पलके उठ पपोलिये बिन बुझे मुग्ध अजान सो प्रभ चित न आयो छुटेगी बेबान सतगुर से

चाक चखाया चौथे पोर पया तद ही चित ना आयो जिन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान जिसते सोजी मन पई मिलिया पुरख सुजान नानक डिठा सदा नाल हर अंतर जामी जान। श्री राग महला पंजवा सबे गल्ला विसरन इको विसरना जाओ तंदा सब जलाए कै।

जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ गुर ते महल प्राप्ते जिस लिखिया हो वै मत मेरे मन एकस्यों चित लाए एकस बिन सब तंद है।

तपना आठ पहर प्रभ त्याय तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ तिसकी सरनी परमना जिस जेवड अवरना कोए जिस सिमरत सुख होए कणा दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए साध संगत होए निर्मला कटिए जम की फास सुख दाता पै पंजनो।

मेरे मन हर हर नाम ते आए, नाम सहाय सदा संग आगे ले छड़ाए रहाओ। दुनिया किया वडिआइयां।

उपाव स्यान सगल छाड़े गुर की चरणी लाग तिसे प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवे पाग तिसे प्राप्त पाई हो जिस देवे प्रव्याप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन सहो में ताप नानक कहो गुर पेटिया बिन से सगल संताप। श्री राग महला पंजवा। एक पछाणु जी का इको रखनहार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार तिस शरणाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार। मन मेरे सगल उपाव त्याग गुर पूरा आराध नित इकस की लिव लाग रहाओ इको पाई मित इक इको मात पिता इकस की मन टेक है जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनो न विसरे जिन सब किछ वस कीता। कर इको बाहर इको थान थनंतर आप जी जंत सब जिन

जिना सतगुर स्यों चित लाया से पूरे प्रधान। जिनको आप दयाल होए तिन उपजे मन ज्ञान, जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम। मन मेरे एको नाम से आए।

काल साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कटी है गुरु दर्शन देखने हाल। थान थान पर रब रया।

मेरे मन गुर सबदी सुख होए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए न कोए। रहाओ मन किया इच्छा पूरिया, पाया नाम निधान अंतर जा।

पाया लाहा लाभ नाम पूरन होए काम कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम आवन जाना रह गया आप हुआ मेरवान सच महल कर पाया गुर का शब्द पछान भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार हलत पलत मुख उजने।

वड पागी मिल संगती सच्चा शब्द विसाहो कर सेवा सुख सागर है सिरसाहा पास साहो चरण कमल का आसरा।

हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद। जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद। नानक सगले दोख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। श्री राग महला पंजवा। प्रीत लगी तिस सच स्यों मरे ना आवे जाए। ना वे छोड़िया विछड़े सब में रहा समाए। दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत भाए। अचरज रूप निरंजनो गुर में लाया माए। पाई रे मीत करो प्रभ सोए। माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसे कोए रहाओ। दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार। सखा सहाय अत वड्डा

एक मन एक त्याये मन की लाए भरांत गुण निधान नव तन सदा पूरन जाकी दात सदा सदा आराध्य दिन विसरो नहीं रात जिनको पूरब लिखिया तिनका सखा गोविंद तन मन तन अर्पी सबो सगल वारिये एह जिंद देखे सुने हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद अकिर्त कणा नो पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवा मन तन तन जिन प्रभ दिया रखिया सह सवार सर्व कला कर था प्या अंतर जोत अपार सदा सदा प्रभ सिमरिय अंतर रत उर्धार मेरे मन हर बिन अवर न कोय प्रभ शरणाई सदा रहो दुख ना व्यापे कोय रहाओ रतन पदार्थ मान

मनमुख पस न पाक अंतर बाहर रव रहा तिसनो जाने दूर तृष्णा लागी रच रहा अंतर हो मैं कूर भक्ति नाम विहुणिया आवे मंजे पूर राख ले हो प्रभ करणहार जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखन हार महा बिकट जम पाया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हरमया श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर तन मेरा राज रूप मैं देश सुतदारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेश हर नाम हृदय न वसई कारज किते न लेख मेरे मन हर हर नाम ते आए कर संगत नित साधकी गुरचरणी चित लाए रहाओ नाम निधान ते आई है मस्तक हो वै पाग कारज सब सवारियां।

जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सुआओ। ऐसे मिले वडियाईया दरगे पावे थाओ, करे कराए आप प्रभ सब किछ तिस ही हाथ, मार आपे जी वालदा अंतर बाहर साथ, नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा। शरण पए प्रभ अपने गुरु होआ कृपाल, सतगुर के उपदेश है बिनसे सर्व जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल, मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो विसार, रहाओ गुण गोविंद नित गाविए अवगुण कटन हार, बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्तार, सहजे सिफती रत्या पावजल उतरे पार, तीरथ वर्त लख संजमा पाये साधु दूर, लूक कमावे किस्ते जा वेखे सदा हदूर, थान थनंतर रव रहा प्रभ मेरा भरपूर, सच पात साही अमर सच सच्चे।

रसना सच्चा सिमरिए मन तन निर्मल होए। मात पिता साथ अगले तिस बिन अवर न कोए। मेर करे जे आपनी चसा न विसरै सोए। मन मेरे साचा सेव जिचर सास, बिन सच्चे सब कूड़ है अंते होए विनाश। रहाओ साहेब मेरा निर्मला तिस बिन रह न जाए। मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए। चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर न जाए। तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार, सतगुरु दाता नाम का।

ज्यों कूकर हरकाया तावे देह दिस जाए। लोभी जंत ना जानई पख अपख सब खाए, काम क्रोध मद व्यापिया फिर जो नहीं पाए। माया जाल पसारिया पीतर चोग बनाए, तृष्णा पंखी फासिया निक्स ना पाए माए। जिनकी ता तिसे ना जानई फिर आवे जाए, अनक प्रकारी मोहया बहुविध एहो संसार। जिसनो रखे सो रहे समरथ पुरख अपार, हर जन हर लिव उदरे नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवा कर दूजा, गोयल आया गोयली क्या तिस डंफ पसार। मोहलत पुन्नी चलना तू संभल कर बार, हर गुण गाओ।

प्रभात। क्या तू रत्ता ग्रस्त्यों सब फुला की बागात, मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रभ लोड, सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़, लख चौरासी भरमत्या दुलभ जन्म पाए हुए, नानक नाम संभाल तू।

मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ तन सो तेरा थान रहाओ। जिचर वस्या कंत कर जियो जियो सब का हाथ जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई ना पूछे तेरी बात। पेई अरणै सौ सेव तू सौ रणै सुख वस गुर मिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। सबना सोहरै वंजना सब मुकलावन हार नानक तन सुहागणी जिन सै नाल प्यार। श्री राज महला पंजवां कर छेवां।

सगल सियान पास साठ शब्द लिवलाए रहाओ। दुख कलेश ना पौ व्यापे गुरु मंत्र हृदय होए। कोट जतना कर रहे गुरु बिन तरयो ना कोए। देख दर्शन मन साधारण है पाप सगले जाहे। हौं तिनके बलिहारणे जे गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन वसे साच हर का नाओ। सेवड पागी नानका जिना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवा। संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार। जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उधार। जप मन नाम एक अपार प्राण मन तन जिन्हें दिया हृदय का आधार रहाओ। काम क्रोध अंकार माते व्याप्या संसार। पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार। सत संतोख दया कमावे ए करनी सार। आप छोड़ सब होए रेणा जिस दे प्रभ निरंकार। जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर परम काटिया।

पिछे छुटी है जिन अंदर नाम निदान, गुरजेवर दाता को नहीं जिन दिता आत्मदान। आए से प्रवान है जिन गुर मिलिया सुवाए, सच्चे से तीरतिया दरगह बैसन जाए। करते हथ वड्याईया पूरब लिखिया पाए, सच करता सच करनहार सच साहेब सच टेक। सच्चो सच वखाणी है सच्चो बुद्ध विवेक, सर्व निरंतर रव रहा जप नानक जीवे एक। श्री राग महला पंजवा। गुर परमेश्वर पूजिए तन लाए प्यार, सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार। सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार, बिन साधु संगत रत्या माया मोह सवचार। मेरे साजन हर हर नाम समाल, साधु संगत मन वसै पूरन होवे काल। रहाओ गुर समरथ अपार गुर वड पागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला गुर जेवड अवर न कोय। गुर करता गुर करनहार गुरमुख सच्ची सोए, गुर ते बाहर किछ नहीं गुर कीता लोड़े सो होए। गुर तीरथ गुर पार जात गुर मनसा पूरन हार, गुरदाता हर नाम दे उदरे सब संसार। गुर समरथ गुर निरंकार गुर ऊंचा अगम अपार, गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार। जितड़े फल मन बाछिए तितड़े सतगुर पास, पूरब लिखे पावणे साच नाम दे रास। सतगुर सरणी आया बहुड़ नहीं विनाश, हर नानक कदे ना विसरो एहो जियो पिंड तेरा साथ। श्री राग महला पंजवा। संत जनो सुन पाई हो छूटन सा चैन आए, गुर के चरण सरेवणे तीरथ हर का नाव। आगे दरगह मनिए मिले निथावे थाव, पाई रे साची सतगुर सेव। सतगुर तुठे पाई है पूरन अलख अभेव। रहाओ सतगुर विटो वारिया जिन दिता सचनाओ, अंदिन सच सलाहना सच्चे के गुण गाओ। सच खाना सच पहनना सच्चे सच्चा नाओ, सास गिरास ना विसरे सफल मूरत गुर आप। गुरजेवड अवर ना दिसई आठ पहर किस जाप, नदर करे ता पाई है सच नाम गुणतास। गुर परमेश्वर एक है सब में रहा समाए, जिनको पूरब लिखिया सेई नाम ते आए। नानक

पाखंड प्रेम ना पाइए, खोटा पाज खुआर हर जियो त्यों फिर रावे नार। तुद पावन सुहागणी अपनी कृपा लहें सवार। रहाओ गुर सबदी सिगारिया, तन मन फिर कै पास, दोए कर जोड़ खड़ी तक।

साची प्रीत ना टुटई साचे मेल मिलाओ। शब्द रती मन वेदिया हो सद बलिहारे जाओ। सा तन रंड ना बैसई जे सतगुर माए समाए। फिर रिसालू नौतनो साचो मरे न जाए। नित रवे सुहागणी साची नजर जाए। साच तड़ी तन मांडिये कापड़ प्रेम सिगार। चंदन चीत वसाया मंदर दसवां द्वार। दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार। नारी अंदर सोहणी मस्तक मणि प्यार। शोभा सुरत सुहावणी साचे प्रेम अपार। बिन पिर पुरख न जाने साचे गुर कै हेत प्यार। निस अंधियारी सुतिए क्यों फिर बिन रैन विहाय। अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए। जा तन कंतन

छी त्यों मानसा पवे अचिंता जाल रहाओ। सब जग बादो काल को बिन गुर काल अफार, सच रते से उबरे दुबदा छोड़ विकार। हौं तिनके बलिहारने दर सच्चे सच्यार, सीचाने ज्यों पंखिया जाली बद्दक हाथ। गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगे साथ, बिन नामे चुन सुतिये कोई न संगी साथ।

मुख झूठे झूठ बोलना क्यों कर सूचा होए, बिन अब शब्द न मांझिए साचे ते सच होए, मुंदे गुणहीनी सुख के पिर रलिया रस मानसी साच शब्द सुख ने रहाओ, पिर परदेसी जेती है तन वांडी चूरे, ज्यो जल सोरे मछली करण पलाव करे, फिर पावे सुख पाई है जा आपे नदर करे, फिर साला ही अपना सखी सहेली नाल, तन सो है मन मोहया रत्ती रंग निहाल, सबत सवारी सोहनी फिर रावे गुण नाल, कामन काम ना आवे खोटी अवगणियार, ना सुख पेई है सहुरे झूठ जली बेकार, आवन

त्रिभवन सो प्रभ जानिए साचो साचे नाए। सातन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग, मैली मैल बुलाये सो पिर रावे रंग। सच सुहागन सापली पिर मोही गुण संग, पूली पूली थल चढ़ा थल चा डूगर जाओ। बन में पूली जे फिरा बिन गुर बूझ ना।

कर ठाक न होए, नानक एको रव रहा दूजा अवर न कोए। श्री राग महला पहला, गुर ते निर्मल जानिए निर्मल देह शरीर, निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर, सहजे ते सुख अगलो ना लागे जम तीर। पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए, निर्मल साचा एक तू होर मैल परी सब जाए। रहाओ हर का मंदर सोहन।

अंजन पै पंजना देख निरंजन पाए। गुपत प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए। ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे ले मिलाए। कस कस वट्टी लाई है परखे हित चित लाए। खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए। आस अंदेसा दूर कर क्यों मल जाए समाए। सुख को मांगे सबको दुख ना मांगे कोए। सुख है को दुख अगला मन मुख बूझ ना होए। सुख दुख सम कर जानिए सबद पेद सुख होए। वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास। मुन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास। सच रते से जिन गए हो सद बलिहारे जास। चौ जुग मैले मल परे जिन मुख नाम ना होए। भगती पाए विहूनिया मोह काला पथ खोए। जिन्नी नाम विसारिया अवगुण मुठी रोए। खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए। आप पछाने कर वसे हों मैं तृष्णा जाए। नानक निर्मल उजले जो राते हरनाए। श्री राग महला पहला। सुन मन पूले बावरे गुर की चरणी लाग। हर जप नाम से आए तू जम डर पे दुख पाग। दुख कणों दोहागणी क्यों थिर रहे सुहाग।

गुरुमत पद सावास तिस तिस के संग मिलाओ, तिस बिन कड़ी ना जीवो बिन नावे मर जाओ, मैं अंधले नाम ना विसरे टेक टिकी कर जाओ। गुरु जिना का अंधला चेले नाही ठाओ, बिन सतगुरु नाव ना पाये बिन नावे क्या सुआओ, आए गया पछतावना ज्यो सुन्ने कर काओ। बिन नावे दुख देहोरी ज्यो कलर की पीत, तब लग महल न पाई है जब लग साच न चीत, शब्द रपे कर पाई है निर्वाणी पदनीत। हों गुर पूछो अपने गुर पुछ कार कमाओ, शब्द सलाही मन वसे हों मैं दुख जल जाओ, सहजे हुए मिलावड़ा साचे साच मिलाओ। शब्द रते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार, नाम सलाहन सद सदा हर राखे उर्धार, सो क्यों मनो विसारी है सब जिया का आधार। शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार, शब्द ही ते पाये हर नामे लगे प्यार, बिन शब्द जग पूला फिरे मर जन्मे वारो वार। सब साला है आपको वढ़ो वडेरी होए, गुर बिन आप ना चीनिए कहे सुने क्या होए, नानक शब्द पछाणिए हो मैं करे न कोए। श्री राग महला पहला। बिन फिर तन सिगारिए जोबन बाद खुआर, ना माने सुख सेजड़ी बिन फिर बाद सिगार, दुख कणो दोहागणी ना कर सेज पतार। मन रे राम जपो सुख होए, बिन गुर प्रेम ना पाइए शब्द मिले रंग होए, रहाओ गुर सेवा सुख पाइए हर वार सह सिंगार। सच माने फिर सेजड़ी गूड़ा हे प्यार, गुरमुख जान सियाणिए गुर मेली गुणचार। सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए, मन तन साच विकसिया कीमत कह न जाए, हर वार कर सुहागणी निर्मल साचे नाए। मन में मनुआ जे मरे ता फिर रावे नार, इकत तागे रल मिले गल मोतियन का हार, संत सवा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार। खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए, शब्द पछाने रव रहे ना तिस काल संताए। साहिब अतुल ना तोलिए कथन ना पाया जाए, व्यापारी बन जा रहा।

छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच ना पाई है बिन हर भगत प्यार नानक नाम ना विसरे मेले गुर करतार श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे

ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोए सफल्यो बिरखरी आवला छाव कनेरी होए लाल जवे हरमान की गुर पंडारे सोए गुर पंडारे पाईए निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिए पूरे कर्म अपार सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असुर संगार अवजल बिखम डरावनो ना कंदी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिस वंज मलार सतगुर पैका बोहे था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरे दुख लागे सुख जाए जेवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए कट बिन सह दुख अगलो जम पकड़े पछताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत न साथ बिन नावे तन बाद है पूलो मार गयाथ साचो साहिब सेविए गुरमुख अकथो काथ आवे जाए पवाईए पय किरत कमाए पूरब लिखिया क्यों मेटिए लिखिया लेख रजाए बिन हर नाम न छुटिए गुरमत मिले मिलाए तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हौं मैं ममता जल बलो लोभ जलो अभिमान नानक।

दिन जल मरण तिने हे। मन रे क्यों छूटे दिन प्यार, गुरमुख अंतर रल रहा, बख्शे भगत पंडार रहाओ। रे मन ऐसी हर्षों प्रीत करे, जैसी मछली नीर, ज्यों अधिको त्यों सुख।

ऐसी हर्षों प्रीत कर जैसी चात्रिक में है। सर पर थल हरियावले एक बूंद ना पवे के है। कर्म मिले सो पाइए किस पया सिर गे है। रे मन ऐसी हर्षों प्रीत कर जैसी जल दुध होए आवतन आपे।

देत। आखन आते केतरे गुरबिन बूझ न होए, नाम वधाई जे मिले सत रपे पत होए, जो तुध पावे से पले खोटा करा न कोए। गुर शरणाई छुटी है मन खोटी रास, अष्ट तात पाप साकी।

जिन कन मन साज सुधारिया तिस सेती निवलाए रहाओ। तन दै संतर होमी है इक रत्ती तोल कटाए, तन मन समदा जे करी अंदिन अगन जलाए। हर नाम में तुल न पुजई जे लख कोटी कर्म कमाए। अर्ध शरीर कटाइए सिर करवत धराए, तन है मंचल गालिए ती मन के रोग न जाए। हर नाम में तुल न पुजई सब जिठी ठोक बजाए, कंचन के कोट दत करी।

सबको ऊंचा आखिए नीच ना भूसे कोई। इतने पांडे साजिए इक चानन के हो लोए। कर्म मिले सच पाइए थोर बख्श ना मेटे कोई। साध मिले साधु जने संतोख वसे गुर पाए। अकथ कथा विचारिए जो सतगुर माए समाए। ई अमृत संतोखिया दर्द पैदा जाए। कट कट वाजे किंगुरी अंदिन शब्द सुभाए। विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए।

निर्मले शब्द निवारी पाहे नानक करिए सच नाम सिर सारा पाप चाहो मैं हर नाम ना विसरे हर नाम रतन वेसा हो मन मुख पौ जल पच मोए गुरमुख करे अथाहो श्री राग महला पहला कर दूजा मुकाम कर कर।

गुरुमुख कृपा करे भगत की जय, बिन गुरु भगत न होए। आपे आप मिलाए बूझे, ता निर्मल हो वह कोय, हर जियो सच्चा।

रहाओ। आपे हर जग जीवन दाता, आपे बख्श मिलाए, जी जंत एक आवे चारे, क्या को आप सुनाए, गुरमुख आपे देवड़े आए, आपे सेव कराए, देख पुटंब मोह लुभाना, चल दिया नाल न जाए, सतगुरु सेव गुण निधान पाया।

जग जीवन दाता मन पत गवाई, बिन सतगुरु को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुख दाता मन नहीं बसया अंत गया पछताई। तेई अड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, अंग दिन भगत करें दिन राती हों मैं मोह चुकाया, जिस क्यों राता तैसो होवे सच्चे सच समाया। आपे नदर करे पाव लाए गुर शब्दी विचार, सतगुर सेवे सहज उपजे हों मैं तृष्णा मार, हर गुण दाता सद मन वसे सच रखिया उद्धार। प्रभु मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए, नाम निधान हर मन वसे हों मैं दुख सब जाए, सतगुर शब्द सुनाया हों सद बलिहारे जाऊं। अपने मन चित कहे कहाए दिन गुर आप ना जाए, हर जियो भगत वचन सुख दाता कर कृपा मन वसाई, नानक सोबा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वडियाई। श्री राग महला तीजा, हो मैं कर्म कमाव दे जमदंड लगे तिन आए, जे सतगुर सेवन से उबरे हर सेती लिवलाए, मन रे गुरमुख नाम ते आए, गुर पूरब करते लिखिया किना गुरमत नाम समाए। रहाओ जिन सतगुर प्रतीत ना आवई, नाम ना लागो पाओ सुपने सुख ना पावई, दुख में सवे समाए, जे हर हर की चै बहुत लोची है किरत ना मेटे आ जाए, हर का पाना भगती मन्या से भगत पे दर खाए। गुर शब्द दिलावे रंग स्यों बिन कृपा लिया न जाए, जो सो अमृत नीरी है पी दिख फल लागे ताए, से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुरु नाल प्यार, सतगुरु का पान

कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा पंखी बिरख सुहावना सच चुगे गुरु।

अमृत फल पाए। गुरुमुख ब्रह्म हरियावला साचे सह सुवाए, साखा तीन निवारिया एक शब्द निवलाए। अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मन मुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना चाओ, तिन्ना पास ना बहती है ओना कर ना गिराओ। कटिया तै नित जालिए ओना शब्द ना।

हुकम ना जाने बपुड़े पूले सिरे गवार मन हट कर्म कमाउंदे नित नित होए कुआर अंतर सांत न आवई ना सच लगे प्यार गुरमुखिया मोह सोहने गुर के हेत प्यार सच्ची भगती सच रते दर सच्चे सच्यार आए से परवा।

नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा। गुरुमुख नाम से आये मन मुख बूझ न पाए, गुरुमुख सदा मुख उजले हर वस्या मन आए। सहजे ही सुख पाये सहजे रह समाए, पाई रे दासन दासा होए गुर की।

सेवा गुर भगत है विरला पाए कोई रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुरु भाए सदा फिर निचल पाए ना ओ मरे न जाए शब्द मिली ना बिछड़े फिर कै अंक समाए हर निर्मल अप उजला बिन गुर पाया न जाए पाठ पड़े ना बूझे तेखी परम पुलाए गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए माया मोह चुकाया गुरमति सह सुवाए

आए बिन शब्द परम न चूके ना विच्चों हो मैं जाए बिन प्रीति भगत न हो वही बिन शब्द छाए न पाए शब्द हो मैं मारिये माया का परम जाए नाम पदार्थ पाये गुरमुख सह सुभाए बिन गुरु गुण न जापनी बिन गुण भगत न होए भगत वत्सल हर मन वस्या सहज मिलिया प्रभ सोए नानक शब्द हर्षा लाहिए करम प्राप्त होए श्री राग महला की जा माया मोह मेरे प्रभ कीना आके परम पुलाए।

सतगुरु मिले फेर ना पवे जन्म मरण दुख जाए। पूरे शब्द सब सोजी होई हर नामे रह समाए। मन मेरे सतगुरु से चित लाए निर्मल नाम सद नवतनो आप वसे मन आए। रहाओ हर जियो राखो अपनी शरणाई ज्यो राखे त्यो रहना। गुर कै शब्द जीवत मरे गुरमुख पव जल तरना। वड्डे पाग नौ पाईए गुरमुख शब्द सुहाई आपे मन वसिया प्रभ करता सहजे रहा समाई। इतना मनमुख शब्द न पावे बंधन बंद पवाया। लक्ष्यो राशि फिर आवे दिखा जन्म गवाया। भगता मन आनंद है सच्चे शब्द रंग राते। अंगिन गुण गावे सद निर्मल सहजे नाम समाते। गुरमुख अमृत बाणी बोले सब आत्म राम पछाणी। एक को सेवन एक आराधे गुरमुख अकथ कहानी। सच्चा साहिब सेवी है गुरमुख वसे मन आए।

रोए। सतगुरु जिनी ना सेवेओ सेवित आए संसार, जम दर्प दे मारिए फूक न सुने पुकार। बिरखा जन्म गवाया मर जमे वारो वार। एहो जग जलता देख के पज पे सतगुर सरना, सतगुर सत दिलाया सदा सत संजम रहना। सतगुर सच्चा है बोहिखा सब दे पवजल करना। लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त न होई, पर पंडित मोनी थके दूजे पाए पट खोई। सतगुर शब्द सुनाया बिन सच्चे अवर न कोई, जो सच्चे लाए से सच लगे नित सच्ची कार करन। किना निज कर वास

रोग ग्रस्त कुटुंब पलेतिया कदे हरख कदे सोग गौण करे चौकुंट का करी न बैसन सोए चित आवे।

तीर्थ गमन करें, खट कर्मा ते दुगने पूजा करता नाए, रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया रस भोगन विस्तार, बाग सुहावे सोने चले हुक्म अफार, रंग तमाशे बहुविधि चाहे लग रहा, चितना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया। बहुत तनाद अचार वंत शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत पाया।

नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। एहो जगत परम पुलाया आपो तुद खुआया पर पाप लगा दोहाजनी पाग जिना के ना हो जियो। दोहाजनी क्या निशानिया खसमो कुथिया फिर निमानिया मैल

सुहागनी क्या कर्म कमाया, पूर्व लिखिया फल पाया, नदर करे कै अपनी आपे ले मिलाए जियो। हुकुम जिनानो मनाया, तिन अंतर शब्द वसाया, सैया से सुहागनी जिनसे नाल प्यार जियो। जिना पाने का रस आया, तिन विच्चों परम चुकाया, नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जियो। सतगुर मिले फल पाया, जिन विच्चों ए करम चुकाया, दुर्मत का दुख कटिया, भाग बैठा मस्तक आए जियो। अमृत तेरी बाणिया, तेरिया भगता हृदय समानिया, सुख सेवा अंदर रखे अपनी नगर करे निस्तार जियो। सतगुर मिलिया जानिए, जित मिले नाम वखाणिए, सतगुर बाज न पायो, सब थकी कर्म कमाए जियो। औ सतगुर विट्टो कुमाया, जिन परम पुला मार्ग पाया, नदर करे जे आपनी आपे ले रलाए जियो। तू सबना माहे समाया, तिन करते आप लुकाया, नानक गुरमुख प्रगट होया, जाको जोत करी सरकार जियो। आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, अपने सेवक की तैग रखिया, दोए कर मस्तक तार जियो। सब संजम रहे स्यान पा, मेरा प्रभ सब कुछ जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोक करे जयकार जियो। मेरे गुण अवगुण ना विचारिया, प्रभ अपना बिरज समारिया, कंठ लाए कह रखियो न लगे न तकी वाओ जियो। मैं मन तन प्रभु ते आया, जिए इच्छेड़ा फल पाया, सा पाप सा सिर खसम तू, जप नानक जी वै नाओ जियो। तुद आपे आप उपाया, दूजा खेल कर दिखलाया, सब सच्चो सच वर्तदा, जिस पावे तिसे बुझाए जियो। गुर प्रसादी पाया, तिथे माया मोह चुकाया, कृपा करके अपनी आपे ने समाए जियो। गोपी ने गो

निर्मल जोत तिन प्राणिया ओए चले जन्म सवार जियो तेरिया सदा सदा चंगियाया मैं रात दिहे वडियाया अन

لگا پائے جیو سن گلاں گر کہ آیا نامدان اس نام دلایا

तप अंतर करे वन जा रहा मित्रा खसम सेती अरदास खसम सेती अरदास वखाने उर्द ध्यान लिव लागा नामर जाद आया कल पीतर बाहुर जासी नागा जैसी कलम बुड़ी है मस्तक तैसी जीड़े पास कहो नानक प्राणी पहले पहरे हुकुम पया गरवास दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा विसर गया ध्यान हथो हथ नचाई एवन जा रहा मित्रा ज्यो जसदा कर कान हथो हथ नचाई प्राणी माप कह सुत मेरा चेत अचेत मूर मन मेरे अंत नहीं कछ तेरा जिन रच रचिया तिसे न जाने

ज्ञान त्यान गुण संयम नाही जन्म मरोगे झूठे। तीरथ वर्त सुच संयम नाही कर्म तर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापे दूजा। तीजे पैरे रैन कैवन जा रहा मित्रा सर हंस उलखड़े आए जोबन कटे जरुआ जिने बन जा रहा मित्रा आव कटे दिन जाए। अंत काल पछतासी अंगले जहां जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन में पया कराया। बुद्ध विसर्जी गई सियानप कर अवगुण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चेतो लिवलाए। चौथे पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा बिबद पया तन खीन

चोट न खावे ना तिस जमन मरना काल जाल जम जोहे न साके पाए भगत पै तरना पक्षे ती जावे सहल समावे।

मेरा मेरा कर पालिए वन जा रहा मित्रा ले मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा दिते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे सो करे विचार हर त्यावे मन

तन चितवे तन संचवे वन जा रहा मित्रा हर नामा हर ना समाल हर नामा हर हर कदे ना समाल जे होवे अंत सखाई त्यो तन संपै माया झूठी अंत छोड़ चलिया पछताई जिसनो कृपा करे गुर मेले सो हर हर नाम समाल कहो नानक की जय पहरे प्राणी से जाए मिले हर नाल चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा हर चलन वेला आदि का सेवो पूरा सतगुरु बन जा रहा मित्रा सब चली रहन विहादी हर सेवो खिन खिन टिल मूल न करे हो।

कर्म कमाने जैसा लिख तुर पाया, मात पिता पाई सुत बनता तिन पीतर प्रभु संजोया। कर्म सो कर्म कराए आपे इस जनते वस किस

गुरमुख हर हर सदा ते आए, सैया विच फिरे सुहेली, हर दरगे बहां लुड़ाए, लेखा धर्म राय की बाकी, जप हर हर नाम।

नाम से आया। हर पुरुख ना कभी बिन सह जावे, नित देवे चढ़े सवाया। नानक संत संत हर एको, जप हर हर नाम सुहंदी हर

गोविंद नाम समाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर निभे तेरे नाले, संग सहाई हर नाम त्याई, बिरथा कोई न जाए। मन सिंदे से ही फल पावे, चरण कमल चित लाए। जल थल पूर रहा बनवारी, कट कट नदर निहाले। नानक सिख दे मन प्रीतम, साध संग प्रम जाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर दिन झूठ पसारे, मन प्यारिया जियो मित्रा बिक सागर संसारे। चरण कमल कर बोहित करके, सहसा दुख न व्यापे। गुरपुरा पे टैवड पागी, आठ पहर प्रभ जापे। आप जुगादी सेवक स्वामी, पगता नाम आधारे। नानक सिख दे मन प्रीतम, बिन हर झूठ पसारे। मन प्यारिया जियो मित्रा हर लगदे खेप सवली। मन प्यारिया

जोन ना पावे नह मरी। सतगुर दयाल कृपाल पेटत हरे, काम क्रोध लोभ मारिया कथन न जाए अकप स्वामी, सद कह जाए ना।

हर हर उत्तम नाम है जिन श्रेया सब कोई जियो। हर जी सबे प्रतपाल दा कट कट रमैया सोए। सो हर सदा त्याई है तिस बिन अवर न कोए। जो मोहे माया चित लाए दे से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम ते आया हर अंत सखाई होए। मैं हर दिन अवर न कोए। हर गुरसन आई पाई है मन जारिया मित्रा। वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना विण पाया हर किने न पाया नाओ। विच हो मैं कर्म कमाव दे ज्यों वे सुआ पुत ने नाओ। पिता जात ता होई है गुर तुठा करे पसाओ। वद पागी गुर पाया हर एनस लगा पाओ। जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीरत कर्म कमाओ। मन हर हर लगा चाओ गुर पूरे नाम दृढ़ाया। हर मिलिया हर प्रवनाओ रहाओ। जब लग जोबन सांस है तब लग नाम से आए। चल दिया नाल हर चलसी हर अंते ले छड़ाए। हौ बलिहारी तिन तो जिन हर मन उठा आए। जिनी हर हर नाम न चेत्यो से अंत गए पछताए। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम से आए। मन हर हर प्रीत लगाए वड पागी गुर पाया। गुर सब्जी पार लगाए रहाओ। हर आपे आप उपायदा हर आपे दे वैले। हर आपे परम पुलायदा हर आपे ही।

जे सच तरे प्यार सदा हर सच मन वसै नेचल मत अपार रतन अमोलक पाया गुरखा शब्द विचार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर आकार नानक सच्चै सतगुरु सेवै सदा सच वापार महला तीजा और बिरहा सब तात है जब लग साहिब प्रीत न होए एहो मन माया मोहया वेखण सुनण ना होए सह देखे बिन प्रीत ना उपजै अंधा क्या करे नानक जिन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी हर इको करता इक इको दीवान हर इक सैदा है अमर इको हर चित तार हर किस बिन कोई नाहे डर परम पौ दूर कर हर किसै नो सालाहे जे तुद रखे बाहर कर हर जिसनो होए दयाल सो हर जप पौ

मन कर मकसूद जे तिर देखा ते तिर मौजूद महला तीजा गुरसवा एव ना पाई है ना नेड़े ना दूर नानक सतगुर ता मिले जा मन रहे हदूर पौड़ी सपत दीप सपत सागरा नवखंड चार वेद दस अष्ट पुराणा हर सबना विच तू वरतदा हर सबना पाना सब तुझे त्यावे जी जंत हर सारग पाना जो गुरमुख हर आराध दे तिन्हों कुर्बाना तू आपे आप वरतदा कर चोज विडाना श्लोक महला तीजा कलो मसाजनी क्या सदाई है हृदय ही लिख ले हो सदा साहिब के रंग रहे कबू न कूटसने हो कलो मसाजनी जायसी लिखिया भी ना ले जाए नानक सह प्रिय।

मेरे मन हर चेत सोदर है जे पाप कमावदा धर्मी विगसेत तू सच्चा आप न्याओ सच ता दरिया केत जिना नानक सच पछ।

लिखण वाला जल बलो जिन लिखिया दूजा पाओ नानक पूरब लिखिया कमावना अवर ना करना जाए महला तीजा होर कूड पढ़ना कूड बोलना माया नाल प्यार नानक बिन नामे को थिर नहीं पढ़ पढ़ हो एक वार पौड़ी हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का हर की वड्याई वड्डी है जा न्याओ है कर्म का हर की वड्याई वड्डी है जा फल है जी का हर की वड्याई वड्डी है जा ना सुनई कहा चुगल का हर की वड्याई।

कालिया बार चिटविया रीसा करें तिनाड़िया जो सेवे दर खड़िया नाल खसमें रतिया माने सुकर लिया होंदे तान नितानिया रह निमानिया नानक जन्म सकार था जे तिनके संग मिला। पौड़ी तू आपे जल मीना है आपे आपे ही आप जाल तू आपे जाल बताएदा आपे विच सेवाल तू आपे कमल अलिप्त है सह हत्था विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएदा एक निमक कड़ी कर ख्याल हर तुद्दो बार किच नहीं गुर सब्दी वेख निहाल। श्लोक महला तीजा हुक्म ना जाने बहुता रोवे अंदर तोखा नींद ना सोवे जे तन खसमे चले रजाई दर कर शोभा महल बुलाई नानक करमी ए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई। महला तीजा मन मुख नाम विहूनिया रंग कुसुम्बा देख ना पुल इक्का रंग दिन खोड़िया सोचा इसदा मुल दूजे लगे पत मोए मूरख अंध गवार

पौड़ी। शिष्ट उपाय सब तुद आपे रिजक समाया, एक वल छल करके खाम दे मुंह कूड़ कुसत तिन्नी ताया। तुद आपे पावे सो करें, तुद ओते कम कोई लाया, इकना सच बुझायन तिना अतुट पंडार देवाया। हर चेत खाहे तिना सफल है, अचेता हथ तडाया। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित बेद बखाने, माया मोह सुआए, दूजे पाए हर नाम विसारिया, मन मूरख मिले सजाए। जिन जियो पिंड दिता तिस कभू न चेते, जो देंदा रिजक समाहे, जम का पाथा गलो न कटिए, फिर आवे जाए। मन मुख किछु न सूजे, अंगले पूरब लिखिया कमाए, पूरे पाग सतगुर मिले, सुखदाता नाम वसे मन आए। सुख माने सुख पहनना, सुखे सुख विहाए, नान सो ना मनो ना विसारिए, जित दर सच्चे शोभा पाए। महला तीजा। सतगुर सेव सुख पाया, सत नाम गुण तास, गुरमती आप पछाणिया, राम नाम प्रगास। सचो सच तमावना वड्याई वड्डे पास, जियो पिंड सब तिस्ता सिफत करे अरदास। सच्चे सबद सलाहना, सुखे सुख निवास, जप तप संजम मने माहे, बिन नावे त्रिग जीवास। गुरमति नाव पाई है, मन मुख मोह विनाश, ज्यो पावे त्यो रास तू, नानक तेरा दास। पौड़ी। सब को तेरा तू सब सदा, तू सबना रास, सब तू दे पासो मंग दे नित कर अरदास। जिस तू दे तिस सब किछ, मिले इकना दूर है पास। तुद बाजो थाओ को नाही, जिस पासो मंगिए मन वेखो को निर्जास। सब तुदे नो सलाह दे, दर गुरुमुखा नो प्रगास। श्लोक महला तीजा। पंडित पढ़ पढ़ उच्चा फूकदा, माया मोह प्यार, अंतर ब्रह्म न ची नहीं, मन मूरख दावार। दूजे पाए जगत प्रबोध दा, न बुझे विचार, बिरथा जन्म गवाया, मर जम्मे वारो वार। महला तीजा। जिन्नी सतगुर सेविया, तिन्नी नाव पाया, बूझो कर विचार, सदा सांत सुख मन वसे, चूके कूक पुकार। आपे नो आप खाए मन, निर्मल होवे गुर सबदी विचार। नानक सबद रते से मुक्त है, हर जियो हेत प्यार। पौड़ी। हर की सेवा सफल है, गुरमुख पावे ताए, जिस हर पावे तिस गुर मिले, सो हर नाम पे आए। गुर सबदी हर पाए, हर पार लगाए, मन हट किने न पायो, पुछो वेदा जाए। नानक हर की सेवा सो करे, जिस लय हर लाए। श्लोक महला तीजा। नानक सो तूरा वरियाम, जिन विच्चों दुष्ट अंकरण मारिया, गुरुमुख नाम सलाहे जन्म सवारिया। आप होवा सदा मुक्त, सब कुल निस्तारिया, सोहन सच द्वार नाम प्यारिया। मन मुख मरे अंकार मरण बिगारिया, सबो वर्ते हुकुम क्या करे विचारिया। आपो दूजे लग खसम विसारिया, नानक बिन नावे सब दुख सुख विसारिया। महला तीजा। गुरपूरे हर नाम दिलाया, तिन विच्चों परम चुकाया, राम नाम हर कीरत गाई, कर चावन मद दिखाया। हौ में मार एक लिव लागी, अंतर नाम बसाया। गुरमति जम जोहे न साके, साचे नाम समाया। सब आपे आप वर्ते करता, जो पावे सो नाई लाया। जन नानक नाम ले ता जीवे, बिन नावे खिन मर जाया। पौड़ी। जो मिलिया हर दीवान स्यों, सो सबनी दीवानी मिलिया। जिथे ओ जाए तिथे ओ सुरखरू, उसके मुह जिथे सब पापी तरिया। उस अंतर नाम निदान है,
नाम परवरिया, नाव पूजिए नाव मनिए नाए किलविक सब।

आप पछाने सावत राखे इकत करियाने जीवत मरे हर नाम वखाने ऐसा भगौती उत्तम होए नानक सत समावे सोए। महला तीजा अंकर कपट भगौती कहाए पाखंड पार ब्रह्म कदे न पाए पर निंदा करे अंतर मल लाए बार मल तोवे मन की जूठ न जाए सत्संगत त्यों बाद रचाए अंगन दुखिया दूजे पाए रचाए हर नाम न चेते बहु कर्म कमाए पूर्व लिखिया सो मेटना न जाए नानक बिन सतगुरु सेवे मोख न पाए। पौड़ी सतगुरु जिन्नी त्याया से कर न सवाही सतगुरु जिन्नी त्याया से त्रिपत अगाही सतगुरु जिन्नी त्याया तिन जम डर नाही जिन को हो आ कृपाल हर से सतगुरु कैरी पाही तिन ऐसे उठे मुख।

सो ऐसा हर नाम से आये मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर लय छाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरुमुख नाम जपिया वड पागी तिन निंदक दुष्ट सब कैरी पाए। नानक नाम अराध सबना ते वड्डा सब नाम अग्गे आन निवाए। श्लोक महला तीजा। वेस करे कुरूप कुलखणी मन खोटे कूड़ियार तिरके पाने ना चले हुक्म करे गावार। गुर के पाने जो चले सब दुख निवारण हार। लिखिया मेट न सकिए जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौंपे कंत को सब दे तरे प्यार। बिन नावे किने न पाया देखो हृदय विचार। नानक सा सुवालियो सुलखणी जे रावी सिरजनहार। महला तीजा। माया मोह गुवार है तिसदा ना दिसे उरवार ना पार। मनमुख अज्ञानी मां दुख पाए दे डुबे हर नाम विसार। पलके उठ बहु कर्म कमावे दूजे पाए प्यार। सतगुर सेवे अपना पौजल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावे सच नाम उरधार। पौड़ी। हर जल तल मैयल भरपूर दूजा नाहे कोए। हर आप बह करे न्याओ कुड़ियार सब मार कडोए। सचियारा दे वड्याई हर धर्म न्याओ की ओए। सब हर की करो उस्तत जिन गरीब अनाथ राख लिए।

अचरज एक सुनो रे पंडिया, अब किस कह न जाई। सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे, त्रिभुवन मेखली लाई। राजा राम अनहद किंगरी बाजे, जाकी दिस्त नाद लिव लागे। रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलश इक पाया। तिस में तार चुए अत निर्मल, रस में रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया। तीन पवन में एको जोगी, कहो कवन है राजा। ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता। और दुनी सब परम पुलानी, मन राम रसायन माता। श्री राजबाणी भगत बेणी जियो की, पहरियां कह कर।

रे नर गर्भ कुंडल जब आचत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मद ना एनस एक अज्ञान सोनागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनो बिसारया फिर पछतावेगा मूड़या तू कवन कुमत परम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ बाल विनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोह व्यापे रसमित मेद अमृत बिख चाकी तो पंच प्रगट संतापे जब तप संजम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना आराध्या उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधया तरुण तेज परत्रय मुख जो है सर अफसर ना पछाणया उनमत काम महा बिख पूले पाप पुन ना पछाणया सुत संपत देख एओ मन गर्भया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो पग मुख जन्म विगोया कुंडर केस कुसुम ते तौले सपत पताल की बाणी लोचन समय बुद्ध बल नाथी ता काम पवस माधानी ताते बिखे पई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछताना निकुटी देह देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे थाका तेज उड़िया मन पंखी कर आंगन ना सु

अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा, जो पे हम ना पाप करंता, अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता। रहाओ तुम जो नायक आछो अंतर।

हर हर नाम में हर मन भाया, वडपागी हर नाम से आया। गुरपुरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चले जियो। मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले, मेरा प्राण सिखाई सदा नाल चले। गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया, हर नेचल हर तन पल्ले जियो। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया। हों रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई,

हों रह ना सका बिन देखे मेरी माई। हर जियो कृपा करो गुर मेलो, जन नानक हर तन पल्ले जियो। माज महला चौथा। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हों हर बिन दूजा अवर ना जाना। कोई सज्जन संत मिले वडपागी, मैं हर तब प्यारा दसे जियो। हों मन तन खोजी पाल पलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई। मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभु वसै जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कमल विकसै जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे। हर हर दया

था। हर गुण पढ़िए, हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए, मिल सत्संगत हर गुण गाए, जग पौजल दुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर मेल करेहा, मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा, मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई, मैं दसे हर नर हरिए जियो। मेरी बेदन हर गुरु पूरा जाने, हौ रह ना सका बिन नाम वखाने, मैं औखद मंत्र दीजे गुरु पूरे, मैं हर हर नाम उधरिए जियो। हम चात्रिक दीन सतगुरु शरणाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई, हर जल निद हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिए जियो। माज महला चौथा, हर जन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन पी जय जियो। मिल सत्संग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन भाणी, हर हर अमृत हर मन पावे, मिल सतगुर अमृत पी जय जियो। वड पागी हर संगत पावे, पागहीन प्रम चोटा खावे, बिन पागा सत्संग न लब्बे, बिन संगत मैल परी जय जियो। मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पी जय जियो। माज महला चौथा, हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पी आया, हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौदा जियो। आवो संत मैं गल मेल आईए, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाईए, हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौदा जियो। वड पागी हर संत मिलाया, गुरपूरे हर रस मुख पाया, पागहीन सतगुर नहीं पाया, मन मुख गर्भ जूनी नित पौदा जियो। आप दयाल दया प्रभ तारी, मल हौ मैं बिखिया सब निवारी, नानक हट पट्टन विच काया, हर लेंदे गुरमुख सौदा जियो। माज महला चौथा, हौ गुण गोविंद हर नाम ते आई, मिल संगत मन नाम वसाई, हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस की चै जियो। तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता, जाए पुछा जन हर की बाता, पाप मलोवा मल मल तोवा, मिल हर जन हर रस पी चै जियो। सतगुर दाते नाम दृढ़ाया, वड पागी गुर दर्शन पाया, अमृत रस सच अमृत बोली, गुर पूरे अमृत ली चै जियो। हर सत्संगत सतपुरख मिलाइए, मिल सत्संगत हर नाम ते आइए, नानक हर कथा सुन।

पाणे हर गुण गुरमुख गावा, पाणे परम पवे बहु जूनी, सब किछ तिसे रजाई जियो, ना को मूरख ना को स्याणा, वरते सब किछ तेरा पाणा, अगम अगोचर बे अंक अथाह, तेरी कीमत कहन ना जाई जियो। खास संतन की देहो प्यारे, आए पया हर तेरे द्वारे, दर्शन पेखत मन आघावे, नानक मिलन सुभाई जियो। माज महला पंजवा, दुख तदे जा विसर जावे, उख व्यापे बहु विदतावे, सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवे दीन दयाला जियो। सतगुर मेरा वड समरथा, जी संभाली ता सब दुख लथा, चिंता रोग गई हौ पीड़ा, आप करे प्रतपाला जियो। बारिक वांगी हौ सब किछ मंगा, देन दे तोट नाही प्रभ रंगा, पैरी पै पै बहुत मनाई, दीन दयाल गोपाला जियो। हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन बंधन काटे सगले मेरे, हृदय नाम दे निर्मल किए, नानक रंग रसा।

ऊंच नीच करे प्रतपाला, नाम रसायण मंत्र पतायण, गुरुमुख अमृत पीवा जियो, दुख सुख प्यारे तुद त्याई, ए सुमत गुरु

प्रीतम ठाकुर अचपारी तुमरे कर्तव्य तुम ही जानो, तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे। पेटत संग साध संतन कह, सदा जपो दयाला जियो। प्रभ अपना साथ साथ समारो, ए मत गुर प्रसाद मन पारो। तुमरी कृपा ते हुए परगासा, सर्व मया प्रतपाला जियो। सत सत सत प्रभ सोई, सदा सदा सद आपे होई।

लीजियो। सर्व जिया को देवनहारा, गुर प्रसादी नदर निहारा, जल थल मैयल सब तृप्ताने, साधु चरण पखा लीजियो। मन की इच्छे पुजावन हारा, सदा सदा जाई बलिहारा, नानक दान किया दुख पंजन, रते रंग रसा लीजियो। माज महला पंजवा, मन तन तेरा तन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, जियो पिंड सब रास तुम्हारी, तेरा जोर गोपाला जियो। सदा सदा तू है सुखदाई, निव निव लागा तेरी पाई, कार कमावा जे तुद पावा, जा तू दे दयाला जियो। प्रभ तुम ते लेना तू मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सहना, जिथे रखे बेकुंठ सिथाई, तू सबना के प्रतपाला जियो। सिमर सिमर नानक सुख पाया, आठ पहर तेरे गुण गाया, सगल मनोरथ

सांत पई बुझी सब कृष्णा, आनंद पया सब थाई जियो। सुखदाता दुख पंजन हारा, आपे बख्श करे जी सारा। अपने कीते नो आप प्रतपाले, तै पैरी तिसे मनाई जियो। जाकी शरण पया गत पाये, साफ साफ हर नाम ते आये। तिस बिन होर न दूजा ठाकुर, सब तिसे किया जाई जियो। तेरा मान तान प्रभ तेरा, तू सच्चा साहिब गुणी गहेरा। नानक दास कह बेनंती, आठ पहर तुझ ते आई जियो। माज महला पंजवा, सबे सुख परे प्रभ तुठे। गुरपूरे के चरण मन उठे, सह समाज लगी लिव अंकर। सो रस सोई जाने जियो। अगम अगोचर साहिब मेरा, कट कट अंतर वरते मेरा। सदा अलिप्त जिया का दाता, को विरला आप पछाने जियो। प्रभ मिलने की ए निशानी, मन इको सच्चा हुकुम पछाने। सहज संतोष सदा तृप्ता से, आनंद खसम कह पाने जियो। हथी दिखी प्रभ देवन हारे, जन्म मरण रोग सब निवारे। नानक दास किए प्रभ अपने, हर कीर्तन रंग माने जियो। माज महला पंजवा, तीनी दया गोपाल गुसाई। गुर के चरण वसे मन माही। अंगीकार किया तिन करते, दुख का डेरा काया जियो। मन तन वसिया सच्चा सोई, बिखड़ा थान न दिसे कोई। दूत दुश्मन सब सज्जन होए, एको स्वामी आया जियो। जो किस करे सो आपे आपे, बुद्ध सियाणप किछु न जापे। अपने संतानो आप सहाय, प्रभ परम पुलावा लाया जियो। चरण कमल जन का आधारो, आप पैर राम नाम वपारो। सहज आनंद गावे गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्व समाया जियो। माज महला पंजवा, सो सत मंदर जित सच त्याई है। सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है। सा तर्क सुहावी जित वसे हर जन, सच्चे नाम वितो कुर्बानो जियो। सत वडाई कीम न पाई, कुदरत कर्म न कहना जाई। त्याए त्याए जीवे जन तेरे, सत शब्द मन मानो जियो। सत सालाहन बड़ पाजी पाई है, गुर प्रसादी हर गुण गाई है। रंग रते तेरे तुद पावे, सच नाम निशानो जियो। सच्चे अंत ना जाने कोई, थान संतर सच्चा सोई। नानक सच ते आई है सद ही, अंतर जामी जानो जियो। माज महला पंजवा, रैन सुहावड़ी दिन सुहेला। जप अमृत नाम संत संग मेला। करी मूरत सिमरत पल वंजे, जीवन सफल तिथाई जियो। सिमरत नाम दोख सब लाथे, अंतर बाहर हर प्रव साथे। तै पाओ परम खोया गुरपूरे, देखा सबनी जाई जियो। प्रभ समरथ वड ऊंच अपारा, नौ निज नाम परे पंडारा। आद अंत मद प्रभ सोई, दूजा लवे न लाई जियो। कर कृपा मेरे दीन दयाला, जाचित जाचे सादर वाला। देह दान ना

खाते, खुद बिन अवर न कोई करते, मैं कर ओत तुम्हारी जियो। रसना जप जप जीवे स्वामी, पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी, जिन सेविया तिन ही सुख पाया, सो जन्म न जुए हारी जियो। नाम अवखद जिन जन तेरे पाया, जन्म जन्म का रोग गवाया, हर कीर्तन गावो दिन राती, सफल एहा है कारी जियो। दृष्ट तार अपना

दास सवारिया कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया इकस दिन होर दूजा नाही बाबा नानक ए मत सारी जियो। माज महला पंजवा मन तन दत्ता राम प्यारे सर्व सुख दीजे अपना वारे आठ पैर गो

कटिए जम की फासा जियो। चार पदार्थ हर की सेवा, पार जात जप अलख अपेवा, काम क्रोध किल दुख गुर काटे, पूरन होई आशा जियो। पूरन पाग पै जिस प्राणी, साध संग मिले सारंग पानी, नानक नाम वसिया जिस अंतर, परवान गृहस्थ उदासा जियो। माज महला पंजवा, सिमरत नाम हृदय सुख पाया, कर कृपा पंक्ति प्रगटाया, संत संग मिल हर हर जपिया, बिन से आलस रोगा जियो। जा कै गृह नव निध हर पाई, तिस मिलिया जिस पूर्व कमाई, ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर, प्रभ सबना गल्ला जोगा जियो। किन मैं थाप उठा पनहारा, आप इकंती आप पसारा, लेप नहीं जग जीवन दाते, दर्शन डिठे लैन विजोगा जियो। अंचल लाए सब सिस्त्राई, अपना नाव आप जपाई, गुरबो हित पाया कृपा ते, नानक तुर संजोगा जियो। माज महला पंजवा, सोई करना जे आप कराए, जिथे रखे सा पली जाए, सोई सियाना सो पतवंता, हुक्म लगे जिस लीठा जियो। सब परोई इकत तागे, जिस लाए ले सो चरणी लागे, ऊंद कवल जिस होए पर।

झूठा मंगन जे कोई मांगे तिसको मरते करी ना लागे पार ब्रह्म जो सद ही सेवे सो गुरमिल ने चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी गुण गावे अंदिन नित जागी बाह पकड़ तिस स्वामी मेले जिसके मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन उठे बिन परमेश्वर सगले मुठे संत जना की तूड़ नित बांचे नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाये जित सिमरत वर ने चल पाये नानक कौ प्रभु होए दयाला तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदियां महला पहला कर पहला इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सवाए सच्ची दरगे मैल बुलाए सच्चे दीन दयाल मेरे साहिबा सच्चे मन पति आवणिया। हौ वारी जियो वारी सब सुहावणिया अमृत नाम सदा सुख दाता गुरमति मन वसावणिया। रहाओ ना को मेरा हौ किस केरा साचा ठाकुर त्रिभुवन मेरा हौ मैं कर कर जाए कनेरी कर अवगुण पछोतावणिया। हुकम पछाणे सो हर गुण वखाणे गुर के शब्द नाम निशाने सबना का दर लेखा सके छूटत नाम सुहावणिया। मन मुख फूला ठौर ना पाए जम दर बद्दा चोटा खाए बिन नामे को संग ना साथी मुक्ते नाम ते आवणिया। साकत कूड़े सच ना पावे दुबदा बांदा आवे जावे लिखिया लेख न मेटे कोई गुरमुख मुक्त करावणिया। पेयड़े पिर जातो नाही झूठ विछुन्नी रोवे ताही अवगण मुठी महल न पाए अवगण गुण बख्सावणिया। पेयड़े जिन जाता प्यारा गुरमुख बूझे तत बिचारा आवण जाना ठाक रहाए सच्चे नाम समावणिया। गुरमुख बूझे अकथ कहावे सच्चे ठाकुर साचो पावे नानक सच कह बेनंती सच मिले गुण गावणिया। माज महला तीजा कर पहला कर्म होवे सतगुरु मिलाए सेवा सुरत शब्द चित लाए हौ मैं मार सदा सुख पाया माया मोह चुकावणिया। हौ वारी जियो वारी सतगुर के बलिहारणिया गुरमति प्रगास हुआ जी अंगन हर गुण गावणिया। रहाओ तन मन खोजे ता नाउ पाए तावत राखे ठाक रहाए गुर की बाणी अंदिन गावे सहजे भगत करावणिया। इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साच मिले ता वेखा नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द बजावणिया। सच्चा साई सच्ची नाई गुर प्रसादी मन वसाई अंदिन सदा रहे रंग राता दर सच्चे सोजी पावणिया। पाप पुन की सार न जानी दूजे लागी परम पुलानी अज्ञानी अंधा मग न जाने फिर आवन जावणिया। गुर सेवा ते सदा सुख पाया हौ मैं मेरा ठाक रहाया गुर साखी मिटिया अंधियारा बजर कपाट खुलावणिया। हौ मैं मार मन वसाया गुर चरणी सदा चित लाया गुर कृपा ते मंतन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया। जीवन मरना सब तु दैताई जिस बख्शे किस देवड़े आई नानक नाम ते आए सदा तू जम्मन मरण सवारणिया। माज महला तीजा मेरा प्रभ निर्मल अगम अपारा बिन तकड़ी तोले संसारा गुरमुख होवे तोई बूझे गुण कह गुणी समावणिया। हौ वारी जियो वारी हर का नाम मन वसावणिया जो सच लागे से अंदिन जागे दर सच्चे शोभा पावणिया। रहाओ आप सुने ते आपे वेखे जिसनो नदर करे सोई जन लेखे आपे लाए लए सो लागे गुरमुख सच कमावणिया। जिस आप पुलाए सो किथे हथ पाए पूरब लिखिया सो मेटना ना जाए
जिन सतगुर मिलिया से बड़ पागी पूरे कर्म मिलावणिया पेयड़े तन अंगदिन सुती कंक विसारी अवगण मुती अंगदिन सदा फिरे बिल लादी बिन फिर नींद न पावणिया पेयड़े सुखदाता जाता हौ मैं मार गुर शब्द पछाता सेज सुहावी सदा फिर रावे सत सिगार बनावणिया लख चौरासी जी उपाय जिसनो नजर करे तिस गुरु मिलाए किल बिख का सदा जन निर्मल दर सच्चे नाम सुहावणिया लेखा मांगे ता किन दिए सुख नाही फुन दुए तीए आपे बख्श ले प्रभ साचा आपे बख्श मिलावणिया आप करे तै आप कराए पूरे गुर के शब्द मिलाए नानक नाम मिले वड्याई आपे मेल मिलावणिया माज महला तीजा इको आप फिरे परछन्ना गुरमुख वेखा ता एहो मन पिन्ना तृष्णा तज सहज सुख पाया एको मन वसावणिया हों वारी जियो वारी इकस क्यों चित लावणिया गुरमती मन इकट कर आया सच्चे रंग रंगावणिया रहाओ एहो जग पूला तें आप पुलाया इक विसार दूजे लोभाया अन दिन सदा फिरे परम पूला बिन नावे दुख पावणिया जो रंग राते कर्म विदाते गुर सेवा ते जुग चारे जाते जिसनो आप दे वड्याई हर कै नाम समावणिया माया मोह हर चेते नाही जमपुर बद्दा दुख सहाही अन्ना बोला किछ नजर ना आवे मन मुख पाप पचावणिया इक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुख दाता सब इच्छा आप पुजावणिया हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्शे दे वड्याई जम काल तिस नेड़ ना आवे जो हर हर नाम ते आवणिया अंग दिन राते जो हर पाए मेरे प्रभ मेले मेल मिलाए।

ते सच कमाए सतगुर सेवन से तनवंते ऐथे ओथे नाम समावनिया तै पाए सिंगार बनाए गुर प्रसादी महल कर पाए अन दिन सदा रवे दिन राती मजीठे रंग बनावनिया सबना पिरवसे सदा नाले गुर प्रसादी को नदर निहाले मेरा प्रभ अत ऊंचो ऊंचा कर कृपा आप मिलावनिया माया मोय इहो जग सुत्ता नाम विसार अंत विगुत्ता जिते सुत्ता सो जा गाए गुरमत सोजी पावनिया अप्यो पिए सो परम गवाए गुर प्रसाद मुकत गत पाए भगती रखा सदा बैरागी आप मार मिलावनिया आप उपाए संदै लाए लख चौरासी रिजक आप अपड़ाए नानक नाम से आए सच राते जो तिस पावे सो कार करावनिया माज महला तीजा अंदर हीरा लाल बनाया गुर के शब्द परख परखाया जिन सच पल्ले सच वखाने सच कसवटी लावनिया होवारी जियोवारी गुर की बाणी मन वसावनिया अंजन माहे निरंजन पाया ज्योति ज्योत मिलावनिया रहाओ इस काया अंदर बहुत पसारा नाम निरंजन अत अगम अपारा गुरमुख हो वै सोई पाए आपे बख्श मिलावनिया मेरा ठाकुर सच दिड़ाए गुर प्रसादी सच चित लाए सचो सच वरते सबनी थाई सच्चे सच समावनिया वे परवाहो सच मेरा प्यारा किलविख अवगुण काटन हारा प्रेम प्रीत सदा त्याय पै पाए भगत दृढ़ावनिया तेरी भगत सच्ची जे सच्चे पावे आपे दे ना पछो तावे सबना जिया का एको दाता सबदे मार जीवावनिया हर कुद बाजो

देहार अनदिन सार समाल हर राखे गुरमुख सहज समावणिया तुद जेवड़ मैं होर न कोई तुद आपे सिरजी आपे गोई तू आपे ही कर पन सवारे नानक नाम सुहावणिया माज महला तीजा सब कट आपे भोगण हारा अलख वरते अगम अपारा गुर कै शब्द मेरा हर प्रभ त्याय सहजे सच समावणिया हौ वारी जियो वारी गुर शब्द मन वसावणिया शब्द सूजे ता मन स्यों लूजे मनसा मार समावणिया रहाओ पंच दूत मुहे संसारा मनमुख अंधे सुध ना सारा गुरमुख हो वैसो अपना कर राखे पंच दूत शब्द पचावणिया एक गुरमुख सदा सच्चे रंग राते सहजे प्रभ सेवे अनदिन माते मिल प्रीतम सच्चे गुण गावे हर दर शोभा पावणिया एकम एक है आप उपाया दुबदा दूजा त्रिविध माया चौथी पौड़ी गुरमुख ऊंची सच्चो सच कमावणिया सब है सच्चा जे सच्चे पावे जिन सच जाता सो सह समावे गुरमुख करनी सच्चे सेवे साचे जाए समावणिया सच्चे बाजों को अवर ना दुआ दूजे लाग जग खप खप मुआ गुरमुख हो वैसो एको जाने एको सेव सुख पावणिया जी जंत सब शरण तुम्हारी आपे तार देखे कच्ची पक्की सारी अन दिन आपे कार कराए आपे मेल मिलावणिया तू आपे मेले वेखे हदूर सब मैं आप रहा भरपूर नानक आपे आप वरते गुरमुख सोजी पावणिया माज महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरले किने चख दीठी अंतर प्रगास महारस की वह दर सच्चे शब्द बजावणिया हौ वारी जियो वारी गुर चरणी चित लावणिया सतगुर है अमृत सर साचा मन नावे मैल चुकावणिया रहाओ तेरा सच्चे किने अंत न पाया गुर प्रसाद किने विरले चित लाया तुझ सला

गुर के सबद सद रहे समाए, सच सलाही सब कट अंतर, सचो सच सुहावणिया। सच सलाही सदा हजूरे, गुर के सबद रहा पर पूरे, गुर प्रसादी सच नदरी आवे, सच्चे ही सुख पावणिया। सच मन अंदर रहा समाए, सदा सच निश्चल आवे न जाए, सच्चे लागे सो मन निर्मल, गुरमती सच समावणिया। सच सलाही अवर न कोई, जित सेवे सदा सुख होई, नानक नाम रते विचारी, सचो सच कमावणिया। माज महला तीजा, निर्मल शब्द निर्मल है बाणी, निर्मल जोत सब माहे समाणी, निर्मल बाणी हर सलाही, जप हर निर्मल मैल गवावणिया। हों वारी जियो वारी, सुख दाता मन वसावणिया, हर निर्मल गुर सब सलाही, सबदो सुन तिसा मिटावणिया। रहाओ निर्मल नाम वस्या मन आए, मन तन निर्मल माया मोह गवाए, निर्मल गुण गावे नित साचे के, निर्मल नाद बजावणिया। निर्मल अमृत गुर ते पाया, विच्चों आप मुआ सिखे मोह न माया, निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल, निर्मल बाणी मन वसावणिया। जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवे, होमे मैल गुर सबदे तोवे, निर्मल वाजे अनहद तुन बाणी, दर सच्चे सोबा पावणिया। निर्मल ते सब निर्मल होवे, निर्मल मनुआ हर शब्द पर होवे, निर्मल नाम लगे बड़ पागी, निर्मल नाम सुहावणिया। सो निर्मल जो सबदे सो है, निर्मल नाम मन तन मोहे, सच नाम मल कदे न लागे, मुख उजल सच करावणिया। मन मैला है दूजे पाए, मैला चौका मैले छाए, मैला खाए फिर मैल वधाए, मन मुख मैल दुख पावणिया। मैले निर्मल सब हुक्म सवाए, से निर्मल जो हर साचे भाए, नानक नाम वसै मन अंतर, गुरमुख मैल चुकावणिया। माज महला तीजा, गोविंद उजल उजल हंसा, मन बाणी निर्मल मेरी मनसा, मन उजल सदा मुख सो है, अत उजल नाम ते आवणिया। हों वारी जियो वारी, गोविंद गुण गावणिया, गोविंद गोविंद कह दिन राती, गोविंद गुण शब्द सुहावणिया। रहाओ गोविंद गावे सह सुबाए, गुर कै पै उजल होमे मल जाए, सदा आनंद रहे भगत करे दिन राती, सुन गोविंद गुण गावणिया। मनुआ नाचे भगत दृढ़ाए, गुर कै शब्द मने मन मिलाए, सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकाए, शब्दे नृत करावणिया। ऊंचा कूके तने पछाड़े, माया मोह जोहया जमकाले,

सुख दाता सेवन सुख पायन गुरमत मन वसावणिया। औ वारी जियो वारी सुख सह समाध लगावणिया। जो हर सेवै थे सदा सोहै शोभा सुर सुहावणिया। रहाओ सबको तेरा भगत कहाए सही भगत तेरे मन पाए। सत बाणी तुदे सलाहन रंग राते भगत करावणिया। सबको सके हर जियो तेरा गुरमुख मिले ता चूके फेरा। जा तुद पावे ता नाए रचावे तू आपे नाउ जपावणिया। गुरमती हर मन वसाया हरख सोग सब मोह गवाया। इक्कस क्यों लिव लागी सधी हर नाम मन वसावणिया। भगत रंग राते सदा तेरे चाए नौ निद नाम वख्या मन आए। पूरे पाग सतगुर पाया सब दे मेल मिलावणिया। तू दयाल सदा सुखदाता तू आपे मेले गुरमुख जाता। तू आपे देवे नाम वडाई नाम रते सुख पावणिया। सदा सदा साचे तुझ सलाही गुरमुख जाता दूजा को नाही। एक स्यों मन रहा समाए मन मने मन है मिलावणिया। गुरमुख होवे सो साला है साचे ठाकुर वे परवाहे। नानक नाम वसै।

तेरे पगत सो है साचे दरबारे, गुर के शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रहे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया।

तू ना होए, तू कह कर वेखे जाने सोए, आपे करे कराए करता, गुरमत आप मिलावणिया। कामन गुणवंती हर पाए, पै पाए सिगार बनाए, सतगुरु सेव सदा सुहागण, सच उपदेश समावणिया। शब्द विसारण तिना ठौर न ठाओ, तम पूले ज्यो सुन्ने कर पाओ, हलत पलत तिनी दोवे गवाए, दुखे दुख विहावणिया। लिख दिया कागद मस्त होई, दूजे पाए सुख पाए न कोई, कूड़ लिखे ते कूड़ कमावे, जल जावे कूड़ चितलावणिया। गुरमुख सच्चो सच लिखे विचार, से जन सच्चे पावे मोख द्वार, सच कागज कलम मसवाणी, सच लिख सच समावणिया। मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे, गुर प्रसादी मिले सोई जन लेखे, नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा, आत्म राम प्रवास गुरते होवे, हो मैं मैल लागी गुर शब्दी खोवे, मन निर्मल अंदिन भगती राता, भगत करे हर पावणिया। हों वारी जियो वारी, आप भगत करन अवरा भगत करावणिया, तिना भगत जना को सदा नमस्कार कीजे, जो अंदिन हर गुण गावणिया। रहाओ आपे करता कारण कराए, जित पावे तित पारे लाए, पूरे पाग गुर सेवा होवे, गुर सेवा ते सुख पावणिया। मर मर जीवे ता किछ पाए, गुर प्रसादी हर मन वसाए, सदा मुक्त हर मन वसाए, सहजे सहज समावणिया। बहु कर्म कमावे मुक्त न पाए, देशंतर पवे दूजे पाए खुआए, बिरथा जन्म गवाया कपटी, बिन शब्दे दुख पावणिया। तावत राखे ठाक रहाए, गुर प्रसादी परम पद पाए, सतगुर आपे मेल मिलाए, मिल प्रीतम सुख पावणिया। एक कूड़ लागे कूड़े फल पाए, दूजे पाए बिरथा जन्म गवाए, आप डूबे सगले कुल डूबे, कूड़ बोल बिखावणिया। इस तन में मन को गुरमुख देखे, पाले पगत जा हूं मैं सोखे, सिद्ध साधिक मोन तारी रहे लिव लाए, तिन भी तन में मन ना दिखावणिया। आप कराए करता सोई, होर के करे कीते क्या होई, नानक जिस नाम देवे सो लेवे, नामो मन वसावणिया। माज महला तीजा, इस गुफा में अकुट पंडारा, तिस विच वसे हर जियो अलख अपारा, आपे गुपत प्रगट है आपे, गुर शब्दी आप मनावणिया। हों वारी जियो वारी, अमृत नाम मन वसावणिया, अमृत नाम महा रस मीठा, गुरमती अमृत पियावणिया। रहाओ हों मैं मार बजर कपाट खुलाया, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया, बिन शब्द नाम न पाए कोई, गुर कृपा मन वसावणिया। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चामन अज्ञान अंधेर गवाया, ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हर दर शोभा पावणिया। शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम नाल है बहुत व्यवहार दुख पाए, मनमुख अंधे सूजे नाही, फिर किर आए गुरमुख वत पावणिया। गुर प्रसादी सच्चा हर पाए, मन तन वेखे हों में मैल जाए, बैस सुतान सद हर गुण गावे, सच्चे शब्द समावणिया। नौ दरखा के तावत रहाए, दसवें निज करवासा पाए, ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। बिन शब्द अंतर आनेरा, ना वसल है ना चूके फेरा, सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुले नाही, गुर पूरे पाग मिलावणिया। गुपत प्रगट तू सबनी थाई, गुर प्रसादी मिल सोजी पाई, नानक नाम सलाहे सदा तू, गुरमुख मन वसावणिया। माज महला तीजा, गुरमुख मिले मिलाए आपे, काल न जो है दुख न संतापे, हौमे मार बंधन सब तोड़े, गुरमुख शब्द सुहावणिया। हों वारी जियो वारी, हर हर नाम सुहावणिया,
गुरमुख गावे गुरमुख नाचे हर से ती चित लावण्या रहाओ। गुरमुख जीवे मरे प्रवान आरजा ना छीजे शब्द पछाण। गुरमुख मरे न काल न खाए गुरमुख सच समावण्या। गुरमुख हर दर्शो बापाए गुरमुख विच्चों आप गवाए आप करे कुल सगले तारे गुरमुख जन्म सवारण्या। गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर गुरमुख हो मैं चूके पीर। गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे गुरमुख सह समावण्या। गुरमुख नाम मिले वड्याई गुरमुख गुण गावे शोभा पाई सदा आनंद रहे दिन राती गुरमुख शब्द करावण्या। गुरमुख अन दिन सब दे राता गुरमुख जुग चारे है जाता। गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल शब्दे भगत करावण्या। बाज गुरु है अंध अंधारा जम काल गरठे करे पुकारा। अंध रोगी बिस्ता के कीड़े बिस्ता में दुख पावण्या। गुरमुख आपे करे कराए गुरमुख हृदय उठा आप आए। नानक नाम मिले वड्याए पूरे गुरते पावण्या। माज महला तीजा एका जोत जोत है शरीरा सबद दिखाए सतगुर पूरा। आपे फर्क की तोन कट अंतर आपे बनत बनावण्या। हों वारी जियो वारी हर सच्चे के गुण गावण्या। बाज गुरु को सहज न पाए गुरमुख सहज समावण्या। रहाओ तू आपे सो है आपे जग मोह है। तू आपे नदरी जगत परोवे है। तू आपे दुख सुख दे रहे करते गुरमुख हर देखावण्या। आपे करता करे कराए आपे शब्द गुर मन वसाए। शब्दे उपजे अमृत बाणी गुरमुख आप सुनावण्या। आपे करता आपे पुगता बंधन तोड़े सदा है मुक्ता। सदा मुक्त आपे है सच्चा आपे अलख लखावण्या। आपे माया आपे छाया आपे मोह सब जगत उपाया। आपे गुण गाता गुण गावे आपे आप सुनावण्या। आपे करे कराए आपे आपे थाप उठापे आपे। तुझते बाहर कछु न होवे तू आपे कारे लावण्या। आपे मारे आप जीवाए आपे मेले मेल मिलाए। सेवा ते सदा सुख पाया गुरमुख सहज समावण्या। आपे ऊंचा ऊंचो होई जिस आप विखाले सो वेखे कोई। नानक नाम वसै कट अंतर आपे वेख विखालण्या। माज महला तीजा मेरा प्रभ पर

जग जीवन मन वसावणिया, हर जग जीवन निरपो दाता, गुरमत सहज समावणिया, रहाओ कर मैं करती तौल पताला, काही मैं प्रीतम सदा है बाला, सदा आनंद रहे सुख दाता, गुरमत सहज समावणिया, काया अंदर हो मैं मेरा, जमन मरण न चूके फेरा, गुरमुख हो वैसो हो मैं मारे, सचो सच त्यावणिया, काया अंदर पाप पुन दोए पाई, दो ही मिलके सृष्ट उपाई, दोवे मार जाए इकत कर आवे, गुरमत सहज समावणिया, कर ही माहे दूजे पाए अनेरा, चानन होवे छोड़े हो मैं मेरा, प्रगट सब रहे सुखदाता, अंदर नाम ते आवणिया, अंतर जोत प्रगट पासारा, गुर साखी मिटिया अंधियारा, कमल विगास सदा सुख पाया, ज्योति जोत मिलावणिया, अंदर महल वतनी परे पंडारा, गुरमुख पाए नाम अपारा, गुरमुख वन जे सदा वपारी, लाहा नाम सद पावणिया, आपे वस राखे आपे दे, गुरमुख वणजे केई के, नानक जिस नजर करे सो पाए, कर कृपा मन वसावणिया, माज महला तीजा, हर आपे मेले सेव कराए, गुर के शब्द पाओ दूजा जाए, हर निर्मल सदा गुण दाता, हर गुण में आप समावणिया, हो वारी जियो वारी, सच सच्चा हृदय वसावणिया, सच्चा नाम सदा है निर्मल, गुर शब्दी मन वसावणिया, रहाओ आपे गुरदाता कर्म विधाता, सेवक सेवे गुरमुख हर जाता, अमृत नाम सदा जन सोवे, गुरमत हर वस पावणिया, इस गुफा में एक थान सुहाया, पूरे गुर हो में परम चुकाया, अंदर नाम सलाहन रंग राते, गुर कृपा ते पावणिया, गुर के शब्द एहो गुफा विचारे, नाम निरंजन अंतर वसे मुरारे, हर गुण गावे शब्द सुहाए, मिल प्रीतम सुख पावणिया, जम जागाती दूजे पाए कर लाए, नामो पुल्ले दे सजाए, करी मोहत का लेखा लेवे, रतियो मासा

कर कृपा आप मिलावणिया। माज महला तीजा, मनमुख पड़े पंगत कहावे, दूजे पाए महा दुख पावे, विख्या माते किछ सूजे नाही, फिर जूनी आवणिया। हौ वारी जियो वारी, हौ मैं मार मिलावणिया, गुर सेवा से हर मन वस्या, हर रस सहज पियावणिया। रहाओ वेद पढ़े हर रस नहीं आया, वाद बखाने मोहे माया, अज्ञान मती सदा अंधियारा, गुरमुख बूझ हर गावणिया। अकथो कथिए शब्द सुहावे, गुरमती मन सच्चो पावे, सच्चो सच रवे दिन राती, इहो मन सच रंगावणिया। जो सच रते तिन सच्चो पावे, आपे दे ना पछो तावे, गुर कै शब्द सदा सच जाता, मिल सच्चे सुख पावणिया। पूर कुसत तिना मैल ना लागे, गुर प्रसादी अंदिन जागे, निर्मल नाम वसे पट पीतर, ज्योति ज्योत मिलावणिया। त्रै गुण पने हर पत ना जाने, मूलों फुले गुर शब्द ना पछाणे, मोह व्यापे किस सूजे नाही, गुर शब्दी हर पावणिया। वेद पुकारे त्रिविध माया, मनमुख ना बूझे दूजे पाया, त्रै गुण पड़े हर एक न जाने, बिन बूझे दुख पावणिया। जा किस पावे ता आप मिलाए, गुर शब्दी सहसा दुख चुकाए, नानक नावे की

सो पंडित होई आसरे सगले कुल तारे हर नाम मन वसावणिया हो वारी जियो वारी हर रस चक साध पावणिया हर रस चाखे से जन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया रहाओ सो नेह कर्मी जो शब्द विचारे अंतर तत ज्ञान हो मैं मारे नाम पदार्थ नौ निद पाए त्रै गुण मेच समावणिया हो मैं करे नेह कर्मी ना होवे गुर प्रसादी हो मैं खोवे अंतर विवेक सदा आप विचारे गुर शब्दी गुण गावणिया हर सर सागर निर्मल सोई संत चुगे नित गुरमुख होई इस नाम करे सदा दिन राती हो मैं मैल चुकावणिया निर्मल हंसा प्रेम प्यार हर सर वसे हो मैं मार एनस प्रीत सबद साचे हर सर वासा पावणिया मन मुख सदा बग मैला हो मैं मल लाई इस नाम करे पर मैल न जाई जीवत मरे गुर शब्द विचारे हो मैं मैल चुकावणिया रतन पदार्थ करते पाया पूरे सतगुर शब्द सुनाया गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा।

माया मोह जलाए सो हर्ष्यो चित लाए, हर दर मैली शोभा पावण्या रहाओ। देवी देवा मूल है माया, सिमरत सास जिन उपाया, काम क्रोध पथरिया संसारे, आए जाए दुख पावण्या। तिस विच ज्ञान रतन इक पाया, गुर प्रसादी मन वसाया, जप सत संजम सच कमावे, गुर पूरे नाम त्यावण्या। पेयड़े तन परम पुलाणी, दूजे लागी फिर पछो ताणी, हलक पलक दोवे गवाए, सुपने सुख न पावण्या। पेयड़े तन कंत संभाले, गुर प्रसादी वेखे नाले, पिरके सहज रहे रंग राती, शब्द सिंगार बनावण्या। सफल जन्म जिना सतगुर पाया, दूजा पाव गुर शब्द जलाया, एको रव रहा कत अंतर, मिल सत संगत हर गुण गावण्या। सतगुर ना सेवे सो काहे आया, त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया, मन मुख नाम चित ना आवे, बिन नावे बहुत दुख पावण्या। जिन शिष्ट साजी सोई जाने, आपे मेले शब्द पछाने, नानक नाम मिलिया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखावण्या। माज महला चौथा, आद पुरख अपरंपर आपे, आपे थापे थाप उथा।

गुर प्रसाद करे नाम देवे नामे नाम समावणिया। तू आपे सच्चा सृजनहारा पंक्ति परे तेरे पंडारा गुरमुख नाम मिले मन पीजे सहज समाद लगावणिया। आन दिन गुण गावा प्रभ तेरे तुझ साला ही प्रीतम मेरे तुझ बिन अवर न कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावणिया। अगम अगोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करें तू लह मिलाई।

गुरुमुख सदा रहे रंग राती, मिल सच्चे शोभा पावण्या। मनमुख कर्म करे अंकारी, जुए जन्म सब बाजी हारी। अंतर लोभ महा गुबारा, फिर आवण जावण्या। आपसे करता दे वड्याई, जिनको आप लिखत तुर पाई। नानक नाम मिले पौ पंजन, गुर शब्दी सुख पावण्या। माद महला पंजवा कर पहला, अंतर अलख ना जाई लखिया। नाम रतन लै गुजा रखिया, अगम अगोचर सब।

कौन सो बचता कौन सो गिरही कौन उदासी कौन सो कीमत पाए जियो किन विद बांदा किन विद छूटा किन विद आवन जावन टूटा कौन कर्म कौन निह कर्मा कौन सो कहे कहाए जियो कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया किन विद मिलिए किन विद बिछरे ए विद कौन प्रगटाए जियो कौन सो अक्षर जित तावत रहता कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता कौन सो चाल जित पार ब्रह्म ते आए किन विद कीर्तन गाए जियो गुरुमुख मुक्ता गुरुमुख जुगता गुरुमुख ज्ञानी गुरुमुख बक्ता तन गिरही उदासी गुरुमुख गुरुमुख कीमत पाए जियो होमे बांदा गुरुमुख चूटा गुरुमुख आन जान टूटा गुरुमुख कर्म गुरुमुख नेह कर्मा गुरुमुख करे सो सुभाए जियो गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया गुरुमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया गुरुमुख मिलिए मनमुख विचरे गुरुमुख विद प्रगटाए जियो गुरुमुख अक्षर जित पावत रहता गुरुमुख उपदेश दुख सुख सम सहता गुरुमुख चाल जित पार ब्रह्म ते आए गुरुमुख कीर्तन गाए जियो सगली बणत बनाई आपे आपे करे कराए थापे इकस से होयो अनंता नानक एकस माए समाए जियो माज महला पंजवा प्रब अविनाशी ता क्या काड़ा हर परवंता ता जन खरा सुखाला जी प्राण मान सुख दाता तू करे सोई सुख पावनिया हों वारी जियो वारी गुरमुख मन तन पावनिया तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला तुम संग लवे ना लावनिया रहाओ तेरा कीता जिस लागे मीठा कट कट पार ब्रह्म।

चाड़े कर कृपा दास नव निहाले गुण गावे पूरन अविनाशी कह सुन तोट ना आवणिया ऐसे ओथे तू है रखवाला मात गर्भ में तुम ही पाला माया अगर न पोहे तिनको रंग रते गुण गावणिया क्या गुण तेरे आख समाली मंतन अंतर तुद नगर निहाली तू मेरा मीत।

पूरा प्रदान सो मस्तक जिसने पाग जियो मन मंदे प्रभ अवगाहिया ए रस पोगण पातशाहिया मंदा मूल न उपजियो तरे सच्ची कारे लाग जियो करता मन वसाया जन्मे का फल पाया मन पावंदा कंत हरे तेरा थिर होआ सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया पै पंजन की शरण आया लाए अंचल ना।

0: पूरे चरण सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे कट कट एक वर्तदा जल फल महियल पूरे पाप विनाशन सेविया पवित्र संतन की दूरे सब छदाई खसम आप हर जप पई थरूरे करते किया कपाव सो दुष्ट मोए होए मूरे नानक रत्ता सत नाए हर वेखे सदा हजूरे
1: बारह माह मांझ महला पंजवा कर चौथा

जल बिन साफ कुमलावती उपजे नाही दाम हर ना न मिलिए साजने कत पाए विश्राम जित कर हर कंस ना प्रगते पथ नगर से ग्राम सर्व सिगार तंबोल रस।

वैसाख सुहावा तां लगे जा संत पेटे हर सोए। हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है जिस अग्गे सब निवल। हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है।

मानन हर जेठ रंगीला तिस्तनी जिसके पाग मथन असार तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पाक असार तपंदा तिस लगे

प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आसार सुहंदा किस लगे जिस मन हर चरण

जिन्हें सखिए प्रभ पाया हौ तिनके सब बलिहार। नानक हर जी मया कर शब्द सवारन हार, सावन तिना सुहागणी।

सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगे सच खरे सर्व सुखा निज चरण हर।

चैन, हर फिर दिन चैन न पाए, खोज दिते सब देन, आप कमाने विछुड़ी दोष न काहू देन।

दीना नाथ दयाल देव पतित उदाहरण हार आद जुगादि रखदा सच नाम करतार कीमत कोई न जाने को नाही तोलन हार मन तन अंतर वस रहे नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभ को सेव दे तिन के सद बलिहार संत आराधन सब सदा सबना

नानक जीवै जप हरि दोख सबे ही हंत दिन रैन जिसना विसरै सो हरिया होवै जंत। सर्व कला प्रभ पूर्णो मंद निमाणी थाओ हर ओट दही।

मर जम में आया जाया दिन सतगुरु मोह न टूटई सब थके कर्म कमाया गुरमति नाम की आई है सुख रजा जा कुछ पाया कुल उधारे अपना तन जने दी माया शोभा सुरत।

कपड़ पहरा तोवा सदाकार बगा रत्ता पीला काला बेदा करी पुकार होए कुचील रामल तारी दुर्मत मत विकार ना हो ना मैं ना हो होवा नानक शब्द विचार महला पहला वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संजम होवे अंतर मैल लगी नहीं जाने बारो मल मल तोवे अंदा फूल पया जम जाने वस्त्र पराई अपनी कर जाने हो मैं बिच दुख

संजोग मेल मिलाया, तिन्ही किया विजोग जिन उपाया, मूर्ख भोगे भोग दुख सवाया, सुखों उठे रोग पाप कमाया, हरखों सोग विजोग उपाय खपाया, मूर्ख गणत गणाए चगड़ा पाया, सतगुर हथ निबेड़।

चौथा पर हर काम क्रोध झूठ निंदा तज माया अहंकार चुकावे तज काम कामनी मोह तजे ता अंजन माही निरंजन पावे तज मान अभिमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम लिव लावे नानक साचा मन वसे साच सब

क्या सोए, क्या मेवा, क्या क्यों गुड़ मिठा, क्या मैदा, क्या मांस, क्या कपड़, क्या सेज खाली, कीजे भोग विलास, क्या लश्कर, क्या नेब खवासी, आवे महली वास, नानक सच्चे नाम विण सबे तोल विनाश। पौड़ी जाति दे क्या हाथ सच परखिए, मोहरा होवे हाथ मरिए चखिए, सच्चे की सरकार जुग जुग जानिए, हुक्म मने सिरदार दर दीवानिए, फुरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज भी चार शब्द सुनाया, एक होए असवार इतना साखती,

कण लया तन चार दो कुड़ चक्की जोड़ के पीसन आए बैठ जो दर रहे सोब रहे नानक अजब जिठ मैला पहला वेख जे मिठा कटिया कट कुट बद्दा पाए खुंडा अंदर रख के देन सो मल सजाए रस कस कत्तर पाई है तपे तै बिल लाए पीसो फोग संभाली है दिच्चे अग जलाए नानक मिठे पत्री है वेखो लोका आए पावड़ी इकना मरन ना चित आस कने रिया मर मर जमे नित किसे ना के रिया आप नड़े मन चित कहन चंगे रिया जम राजे नित नित मन मुख हे रिया मन मुख लून हराम क्या ना जाने आ बद्दे करन सलाम खसम ना पाने आ सच मिले।

पास, पत्थर पाला क्या करे खुसरे क्या घरवास, कुत्ते चंदन लाई है पीसो कुत्ती ताट, बोला जे समझाए।

बेदा गंध बोले सच होए, मोया गंध ने की सत होए, एक गंध वरते संसार, मूरख गंध पवे मोह मार, नानक आखे एवो विचार, सिफती गंध पवे दरबार। पौड़ी आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आपे परखन हार।

पौड़ी सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया गुरमती आप गवाए सच पछाणिया सच तेरा दरबार शब्द निशानिया सच्चा शब्द विचार सच समाणिया मनमुख सदा कूड़ियार परम कुलाणिया विष्टा अंदर वास साध ना जानिया गिन नामे दुख पाए।

कार कर्म कमाई है, गुरमति आप गवाई नाम से आई है, दूजी कार है लग जन्म गवाई है, बिन नाम है सब विश्व जय खाई है, सच्चा सबल सलाह सच समाई है।

बुझे पावना, खर दर्शन के पेख किसे सच समावना, सच्चा पुरुष अलग शब्द सुहावना, मन्ने नाव विसंख दर्जे पावना, खालक को आ

दोहा सुरिया आपे खसम देखे कर वो पाए, नानक एवे जानिए सब किस किसे रजाए। महला दूजा, नानक परखे आपको ता पारख जान, रोग दारू दोवे बुझे ता वैक्ष जान, वासना करी मामला जाने मेहमान, मूल जान गला करे हान लाए हान, लब न चले सत रहे सो विष्ट परवान, सर संदे आगास को क्यों पहुंचे बाण, अग्गै ओ अगम है वाहे दड़ जान। पौड़ी, नारी पुरख प्यार प्रेम सिदारिया, करन भगत दिन रात न रहनी वारिया, मेला मंज निवार

सवा लिया निडरिया डर लग गर्व से गालिया नावो पुला जग फिर बेतालिया। श्लोक महला तीजा पैर च जमे पै मरे पी पो मन में होए नानक पैर च जे मरे सहला आया सोए। महला तीजा पैविन जीवे बहुत बहुत खुशियां खुशी कमाए नानक पैविन जे मरे मोह काले उठ जाए। पौरी सतगुर होए दयाल ता सरदा पूरी है सतगुर होए दयाल ना कबू चूरी है सतगुर होए दयाल ता दुख ना जानिए सतगुर होए दयाल ता हर रंग मानिए सतगुर होए दयाल ता जमका डर के हा सतगुर होए दयाल ता सद ही सुख दे सतगुर होए दयाल ता नव निध पाईए सतगुर होए दयाल ता सच समाई है। श्लोक महला पहला सिर खोहाए पिए मलवानी जूठा मंग मंग खाई फोल फदीहत मो लैन परासा पानी देख सगाई पेड़ा वांगी सिर खोहायन परियन हाथ सुहाई माऊ पियू किरत गवाए टब्बर रोवन ताही ओना पिंड ना

सिर पर चलिए सही है पार, नगरी कर्मी गुर विचार। कै बिन कोई ना लंगस पार, कै पाओ राख्या पाए सवार। रहाओ कै तन अगन पखे पै नाल, कै पाओ कड़िए सब दुसवार। कै बिन कारक कच निकच, अंधा सच्चा अंधी सच। बुद्धि बाजी उपजे चाओ, सह स्यानप पवे न पाओ। नानक मन मुख बोल।

डर डर जाए, सो डर के हाँ जित डर डर पाए, तुद बिन दूजी नाही जाए, जो किछ वरते सब तेरी रजाए। डरिए जे डर होवे होर, डर डर डरना मन का सोर, रहाओ ना जियो मरे ना डूबे तरे, जिन किछ किया सो किछ करे, हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। हंस हेत आखा समान, फिस विच भूख बहुत नैसान।

सबना का सोए जाके दी जंत तन माल नानक आखण दुखम विचार गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख

सिख हुकम संजोगी गढ़ दस द्वार पंच वसे मिल जोत अपार आप तुले आपे वनजार नानक नाम सवारन हार गौड़ी महला पहला जातो जाए कहां पे आवे कह उपजे कह जाए समावे क्यों बांधियो क्यों मुक्ति पावे क्यों

मन से उपजे मन माए समाए, गुरमुख मुक्तो बंद न पाए, शब्द विचार छुटे हर नाए, तरवर पंखी बहु निस्वास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, साज बिहाग तक है आगास, देह दिस पारे कर्म लिखियास। नाम संजोगी गोयल खाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन वखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साध मिले पूरव संजोग, सच रहसे पूरे हर लोग, मन तन दे ले सहज सुभाए, नानक तिन कै लागू पाए, गौड़ी महला।

वाहो वाहो साचे मैं तेरी टेक, हो पापी तू निर्मल एक राव, अग्न पानी बोले पड़वाओ, जेवा इंद्री एक सुआओ, दिस्त विकारी ना।

होए, पर पंच व्याप रहा मन दोए, फिर नारायण करे सो होए, बोहित चढ़ो जावे वार, ठाके बोहित दरगे मार, सत्साला ही तन गुरुद्वार, नानक दर कर एकंकार, गौड़ी महला पहला, उल्टियो कमल ब्रह्म विचार, अमृत तार गगन दस द्वार, त्रिभुवन वेदिया आप मुरार, रे मन मेरे पौम न कीजे, मन माने अमृत रस पीजे रहाओ, जन्म जीत मरण मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया, नजर कई कर कर ते जानिया, जप सत तीरथ मज्जन नाम, अजक विसार करो किस काम, नर नारायण अंतर जाम, आन मनो तो पर कर जाओ, किस जाचो नाही को थाओ, नानक गुरुमत।

पहला किस पया नह मेटे कोए क्या जानो क्या आगे होए जो तिस पाना सोई हुआ अगर न करने वाला दुआ न जाना कर्म केवड़ तेरी दात कर्म कर्म तेरे नाम की जात रहाओ तू एवड़ दाता देवन हार सोत नाही खुद भगत पंडार किया गर्द न आवे रास जियो पिंड सब तेरे पास तू मार जीवाले बख्श मिलाए जो पावी त्यो नाम जपाए तू दाना बीना साचा सिर मेरे गुरमत दे परोसे तेरे तन में मैल नाही मन राता गुरबचनी सच शब्द पछाता तेरा तान नाम की वड्याई नानक रहना भगत शरणाई गौड़ी महला पहला जिन अटक कहाया अप्योपी आया हम पै विसरे नाम समाया क्या डरिए डर डर है समाना पूरे गुर के शब्द पछाना रहाओ जिस नर राम हृदय हर वास सहज सुभाए मिले सावास जाए सवारे सांस बिहाल इत उत मन मुख बांधे काल एनस राम हृदय से पूरे नानक राम मिले परम दूरे गौड़ी महला पहला।

सतगुरु ते हर जान, राम भगत गुर सेवा करना, बहुड़ जन्म ना होए है मरना। रहाओ चार पदार्थ कहे सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित भुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जा कह हृदय वस्या हर सोई, गुरुमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरुमत पाए परमानंद। जिन पाया गुर देख दिखाया, आशा माहे निराश बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला, अमृत पाया रह सुखाली, बाजी इहो संसारो, लग लोभ मुझ

हाँ तुद आसा मेरी काया तू सुन सिखामारी निंदा चिंदा करें पराई झूठी लाए तबारी वेल पराई जो है जियड़े करें चोरी बुरियारी।

सुन मूरख मन अजाना, भोग तिसे का पाना रहाओ। साओ हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके वन जा रे, जियो पिंड सब।

थी हम तो पंड उचाई रे रात अनेरी सूजस नाही लज टूकस मूसा पाई रे मन मुख करे ते का दुख लागे गुरमुख मिले बढ़ाई रे जो तिनकी आसोई हुआ कीर्तना मेटिया जाई रे सुबर भरे ना होवे उने जो राते रंग लाई रे तिनकी पंख होवे जे नानक तो मूड़ा किस पाई रे गौड़ी चेती मेला पहला कब की माई बाप कब चेरा किदू था वो हम आए

तरे अंश न चाहे आ जाए, अंश को चाहन जो गए से आए अंश गवाए। आपन लिया जे मिले ता सबको पाग छु होए, कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचे सब कोए। नानक करना जिन किया सोई सार करे, हुक्म न जाती खत्म का किसे बढ़ाई दे। गौड़ी बैरा गुण मेला पहला, हरणी होवा बन बसा संग मूल चुन खाओ। गुर प्रसादी मेरा सौ मिले, वार वार हो जाओ जियो। मैं बन जारन राम की, तेरा नाम वखरवा पार जी रहाओ। कोकिल होवा अंब बसा सहज सबक विचार, सहज सुबह मेरा सौ मिले।

पुरवार पार मेरा सौवत है, हो मिलोगी बाप पार। नागन हो वहाँ तरवसा शब्द वसै कौ जाए, नानक सदा सुहागनी जिन ज्योति ज्योत समाए। गौरी पूर्वी।

इतना पारा वार मेरा प्रभु बख्शे बख्शनहार। गुरु मिले सब मत बुद्ध होए, मन निर्मल वसे सब सोए, साच वसे साची सब कार, उत्तम करनी शब्द विचार। गुर ते साची सेवा होए, गुरमुख नाम पछाने कोए, जीवे दाता देवन हार, नानक हर नामे लगे प्यार, गौड़ी ग्वारे री महला तीजा।

पूरे पाग मिले गुर आए साचे सहज साथ समाए रहाओ। गुर मिले कृष्णा अगन बुझाए गुर ते सांत बसे मन आए गुर ते पवित्र पावन सुच होए गुर ते शब्द मिलावा होए। बाज गुरु सब परम पुलाई बिन नामे बहुता दुख पाई गुरमुख हो वैसो नाम से आए दर्शन सत्य सच्ची पत होई। किसनो कही है दाता इक सोई कृपा करे शब्द मिलावा होई मिल प्रीतम साचे गुण गावा नानक साचे साथ समावा। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा सोथाओ सच मन निर्मल होए सच निवास करे सच सोए सच्ची बाणी जुग चारे जापे सब किस साचा आपे आपे। कर्म होवे सब संग मिलाए हर गुण गावे बैस सुखाए रहाओ। जलो एह जेवा दूजे पाए हर रस न चाखे फीका आलाए बिन बूझे तन मन फीका होए बिन नावे दुखिया चलिया रोए। रसना हर रस चाखिया सहज सुदाए गुर कृपा ते सत समाए साचे राती गुर शब्द विचार अमृत पीवे निर्मल तार। नाम समावे जो पांडा होए उंदे पांडे टिके ना कोए गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच पांडा जिस शब्द।

गावत रहे जिस सतगुरु पावे मन सन राता नाम सुहावे रहाओ एक गावे एक भगत करे नाम न पावे बिन असनेह सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना तिर राखिया सदा उद्धार भगत करे मूर्ख आप जनावे नच नच टपे बहुत दुख पावे नचिए टपे भगत न होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वछल भगत कराए सोए सच्ची भगत विचों आप खोए मेरा प्रभ साचा सब विद जाने नानक बक्से नाम पछाने गौड़ी ग्वारे री महला तीजा मन मारे तात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोए मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे देवड़ियाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाओ गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन में मत मैगल मित बारा गुर अंकत मार जीवालन हारा मन असाध साधे जन कोए अचर चरे ता निर्मल होए गुरमुख एव मन लया सवार हों मैं विच्चों तजे विकार जो तुर राखियन मेल मिलाए कदे ना बिछुड़े शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाने गौड़ी ग्वारे री महला की जा हों मैं विच सब जग बौराना दूजे पाए परम फुलाना बहुत चिंता चितवे आप न पछाना तंदा करत्या अंदिन विहाना हृदय राम रमो मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ गुरमुख हृदय जिन राम पचाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हों मैं मार गुर शब्द

जित सेवे दर्ग है पत परवाना, हर के नाम विटो बल जाओ, तू विसरे तद ही मर जाओ रहाओ, तिन तू विसरे जे तुझ आप भुलाए, तिन तू विसरे जे दूजे पाए, मन मुख अज्ञानी जो नी पाए, मन मुख अज्ञानी जो नी पाए, जिन एक मन तुठा से सतगुरु सेवा लाए, जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाए।

साई कहा गुपत प्रगट प्रभ बनत बनाई आपे सुतिया देह जगाई किसकी कीमत किने न होई कह कह कथन कहे सब कोई गुर शब्द समावे बूझे हर सोई सुन सुन वेखे शब्द मिलाए वड्डी वड्याई गुर सेवा से पाए नानक नाम रते हर नाम समाए नानक नाम रते हर नाम समाए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा मनमुख सूता माया मोह प्यार गुरमुख जागे गुण ज्ञान विचार से जन जागे जिन नाम प्यार सहजे जागे समय न कोए पूरे गुर से बूझे जन कोए रहाओ असंत अनाड़ी कदे न बूझे कथनी करे ते माया नाल लूझे अंध अज्ञानी कदे न सीजे इस युग में राम नाम निस्तारा बिरला को पाए गुर शब्द विचारा आप करे सगले कुल उधारा इस कल युग में कर्म कर्म न कोई कली का जन्म चंडाल कह कर होई नानक नाम बिना को मुक्त न होई गौड़ी महला तीजा ग्वारे री सच्चा अमर सच्चा पातशाह मन साचे राते हर वे परवाहो सत्य मैल सच नाम समाहो सुन मन मेरे शब्द विचार राम जपो पर जल उतरो पार रहाओ करमे आवे करमे जाए के जग जन्मिया दूजे पाए मन मुख न चेते आवे जाए आप पुला के प्रत आप पुलाया इहो जियो विडानी चाकरी लाया माँ दुख खटे बिरथा जंगवाया कृपा कर सतगुरु मिलाए एको नाम चेते विच्चों परम चुकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा जिना गुरुमुख त्याया तिन पूछो जाए गुर सेवा ते मनपति आए से तनवंत हर नाम कमाए पूरे गुर ते सोजी पाए हर हर नाम जपो मेरे पाई गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ आप पछाणे मन निर्मल होए जीवन मुक्त हर पावे सोए हर गुण गावे मत उत्तम होए सहजे सहज समावे सोए दूजे पाए न सेवे आ जाए हों मैं माया महा बिख खाए पुत कुटुंब गृह मोहया माए मन मुख अंधा आवे जाए हर हर नाम देवे जन सोए अंजन भगत गुर शब्दी होए गुरमत विरला बूझे कोए नानक नाम समावे सोए नानक नाम समावे सोए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा गुर सेवा जुग चारे होई पूरा जनकार कमावे कोई अखुट नाम तन हर कोट न होई ऐसे सवा सुख दर शोभा होई ए मन मेरे परम न कीजे गुरुमुख सेवा अमृत रस पीजे रहाओ सतगुर सेवे से महापुरुष संसारे आप उदरे कुल सगल निस्तारे हर का नाम रखे उदारे नाम रते पौजल उतरे पारे सतगुर सेवे सदा मन दासा हो मैं मार कमल परगासा अनहद वाजे निज कर वासा नाम रते कर माहे उदासा सतगुर सेवे तिन की सच्ची बाणी जुग जुग पवती आस वखाणी हम दिन जपें हर

हृदय नाम नित हर रस कोग, गुरुमुख प्राणी नाम हर चाहे, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान स्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा से किने विरले चख दीठा, कर्म कांड बहु करे अचार, बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार, बंधन बांधियो माया पास, जन नानक छूटे गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती ऊपर मेघुला बरसत है, क्या धरती मदे पानी नाही, जैसे धरती मदे पानी प्रगासिया, बिन पगा बरसत फिराही।

पुरुष होए के क्या होए कम समाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझ ही माही समाही। इतने जन्म फूल परे से जा पाया ता फूले नाही, जा का कार्य सोई पर जाने जे गुर के सबल समाही। तेरा शब्द तू है आपे परम कहाई, नानक तत् तत् क्यों मिलिया पुनरप जन्म न आही। गौरी बैरागन महला तीजा, सब जग काले वस है बांदा दूजे पाए, हो मैं कर्म कमाऊं दे मन मुख मिले सजाए। मेरे मन गुर चरणी चित लाए, गुरमुख नाम निधान ले दरगे ले छबाए। रहाओ लक्ष चौरासी परम दे मन हट आवे जाए, गुर का शब्द न चीने हो फिर जो नहीं पाए। गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसिया मन आए, हम दिन भगती रत्या हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरे प्रतीत होए हो मैं तजे विकार, जन नानक करमी पायन हर नामा भगत पंडार। गौरी बैरागन महला तीजा, कई अड़े दिन चार है हर हर लिख पाया, शोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया। तेल करे गुण समले सौरे वास पाया, गुरमुख सहज समानिया हर हर मन पाया। ससुरे पेये फिर वसे कहो कित विद पाये, आप निरंजन अलख है आपे मेलाये। रहाओ आपे ही प्रभ देह मत हर नाम ते आई है, गढ़पागी सतगुर मिले मुख अमृत पाई है। हो मैं दुबदा बिन सजाए सहजे सुख समाई है, सब आपे आप वर्तदा आपे नाए लाई है। मन मुख गर्भ न पायो अज्ञान ए आने, सतगुर सेवा ना करें फिर पछताने। गर्भ जो नी वास पाए दे गर्भे गल जाने, मेरे करते एवे पामदा मन मुख परमाने। मेरे हर प्रभ लेख लिखाया दुर्मस्तक पूरा, हर हर नाम से आया पेटिया गुरसूरा। मेरा पिता माता हर नाम है, हर बंधक बीरा हर हर बस मिलाए प्रभ जन नानक कीरा। गौरी बैरागन महला तीजा, सतगुर ते ज्ञान पाया हर सत बिचारा, मत मलीन प्रगट पई जत नाम मुरारा। शिव सकत मिटाया चूका अंधियारा, तुरमस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा। हर कित विद पाई है संत जनो जिस देख हो जीवा, हर दिन चसाना जीवती गुर मेलियो हर रस पीवा। रहाओ हर हर गुण गावा नित हर सुनी, हर हर गक्कीनी हर रस गुर के पाया मेरा मन तन लीनी। तन तन गुर सतपुरख है जिन भगत हर दीनी, जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी। गुण दाता हर

रे हर शरणागत राखले हो मूड मुग्ध निस्तारे सहज आनंद सदा गुरुमति हर हर मन त्याया सज्जन हर प्रभ पाया पर सोहेला गाया हर दया तार प्रभ बेनती हर हर चेताया जन नानक मंगे तूर तिन जिन सतगुर पाया गौड़ी ग्वारे री महला चौथा चौथा चौक दे इको अंकार सतगुरु प्रसाद पंडित खास सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर पद मन मेरे।

सूद वैश पर किरत कमावे, मैं मूरख हर नाम छुड़ावे। सब तेरी सृष्ट तू आप रहा समाई, गुरमुख नानक दे वड्याई। मैं अंधले हर टेक टिकाई, मैं अंधले हर टेक टिकाई। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, निर्गुण कथा कथा है हर की। पज मिल साधु संगत जन की, तर पौजल अकथ कथा सुन हर की। गोविंद सत्संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए। रहाओ जो जन प्यावे हर हर नामा, तिन बासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावे। सो जन हमरे मन चित पावे, जन पग रेण वड पागी पावे। संत जना स्यों प्रीत बन आई, जिनको लिखत लिखिया तुर पाई। ते जन नानक नाम समाई, ते जन नानक नाम समाई। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, माता प्रीत करे पुत खाए। मीने प्रीत पई जल नाए, सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए। ते हर जन हर मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाए हमारे। रहाओ जो मिल बछरे गौ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जा फिर कर आवे। हर जन प्रीत जा हर जस गावे, सारंग प्रीत बसे जल तारा।

गुर सिख प्रीत गुर मिले गलाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, पीखक प्रीत पीख प्रभ पाए, भूखे प्रीत होवे अन खाए, गुर सिख प्रीत गुर मिल आघाए, हर दर्शन देहो हर आस तुम।

प्रीत माया मोह काचा बिनस जाए कूड़ा कच पाचा जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा सतगुर सेवा सफल है बनी जित मिल हर नाम ते आया हर तनी जिन हर जपया तिन पीछे छूटी कणी गुर सिख हर बोलो मेरे भाई हर बोलत सब पाप लह जाई राव जब गुर मिलिया तब मन वस आया तावत पंच रहे हर त्याया अंदिन नगरी हर गुण गाया सतगुर पग तूर जिना मुख लाई तिन कूर त्यागे हर लिव लाई ते हर दरगे मुख उजल पाई गुर सेवा आप हर पावे कृष्ण बल पद्र गुर पग लग त्यावे नानक गुरमुख हर आप तरावे नानक गुरमुख हर आप तरावे। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा हर आपे जोगी डंडा तारी हर आपे रब रया बनवारी हर आपे तप

जैसी तू रास दे तैसी हम ले, हर नाम बनन जय रंग स्यो, जे आप दयाल होए दे हम बन जा रे राम के, हर वणज करावे दे रास रे रहाओ। लाहा हर तगत तन खटिया, हर सच्चे सा मन पाया, हर जप हर अक्षर लद्या, जम जा गाती नेड़ ना आया। और वणज करे व्यापारिये, अनंत तरंगी दुख माया, ओए जे है वणज हर लाया, फल से हा तिन पाया। हर हर वणज सो जन करे, जिस कृपाल होए प्रभ दे, जन नानक साओ।

लाए, हल जोते उद्यम करे, मेरा पुत ती खाए। त्यों हर जन हर हर जप करे, हर अंत छाए। मैं मूरख की गत की जय मेरे राम, गुर सतगुर।

जब गुरु बोले तब विषम होए जाए, हम जैसे अपराधी अगर कोई राख है, जैसे हम सतगुरु राख लिए छड़ाए। तू गुरु पिता तू है गुरु माता, तू गुरु बंदप मेरा सत।

हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे, गौरी बैरागन महला चौथा। कंचन नारी में जियो लुभत है मोह मीठा माया, कर मंदर कोड़े खुशी मन अन रस ला।

हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे रहाओ। किछ रूप नहीं किछ जात नहीं किछ ढंग न मेरा क्या मोह लै बोले गुण विहून।

अंदर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारिक हर प्रभ के हैं इयाने तन तन गुरु गुर सतगुर पादा जिन हर उपदेश दे

त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की, गुर सिख रखे जी नाली, जैसे काकी तीस बतीस है, विच राखे रसना मास रत केरी, कोई जानो मास काकी के किछ हाथ है, सब वसगत है।

जरा मरा ताप सिरत साप सब हर के बस है, कोई लाग न सके बिन हर का लाया। ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावो, जन नानक जो अंति अवसर।

कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इच पुनी जन केरिया ले सतगुर तूरा हर भगत दृढ़ावे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिए तोटा मूल न आवई हर लाभ नित दृढ़िए जिसको हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उदर हर गुण गावाही महला चौथा गौरी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग पाया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हौ बोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सवाई हर निकट वसे हर कोली हर हर निकट वसे सब जग के अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुरु पूरे सिर वेचियो गुर पहमोली हर जी अंतर बार तुम शरणागत तुम वड पुरख वडोली जन नानक अंदिन हर गुण गावे मिर सतगुर गुर वे चोली गौरी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीशर पुरख विदाते जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी तित मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर सेती राते सत संगत मिल राम रस पाया हर राम में नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिन से जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सरनाते दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप प्रभ ठाकुर तुम जेवड अवर न दाते जन नानक नाम ले ता जीवे हर जपिए हर

सो सतगुर मेल मेरा प्राणे, राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने। हम मूढ़ मुग्ध अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर के बचन हर हम जाने।

हर का नाम अमृत रस चाखिया, मेरे सतगुर मीठ रस गाने, जिनको गुर सतगुर नहीं पेटिया, ते साकत मूड दीवाने, जिनके कर्महीन तुर पाए, देख दीपक मोय कचाने, जिनको तुम दया कर मेलो, ते हर हर सेव लगाने, जन नानक हर हर हर जप प्रगते, मत गुरमत नाम।

मसीह हर आपे बस ले प्रभ साचा हर आप छदाए छुटी है मेरे मन जप हर हर हर मन जपी है सतगुर की शरण।

जित सेवे निज कर वसिए, गुरुमुख जाए लहो कर अपना, कस चंदन हर जस कसिए। मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम, लै लाहा हर मन हसिए। हर हर आप दया कर देवे, ता अमृत हर रस चखिए। मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे, ते साकत नर जम कुटिए। ते साकत चोर जिना नाम विसारिया, मन तिनके निकट न पिटिए। मेरे मन सेवो अलक निरंजन नरहर, जित सेवे है लेखा छुटी है। जन नानक हर प्रभु पूरे किए, खिन मासा तोल न कटी है। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, हमरे प्राण वसगत प्रभु तुमरे, मेरा जियो पिंड सब तेरी। दया करो हर दर्श दिखावो, मेरे मन सन लोच कनेरी। राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी, गुर किरपाल कृपा किंचत गुर कीनी। हर मिलिया आए प्रभ मेरी, रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी। साबिद तुम हर जानो मेरी, अंदिन नाम जपी सुख पाई, नित जीवा आस हर तेरी। गुर सतगुर दाते पंथ बताया, हर मिलिया आए प्रभ मेरी। अंदिन अनद पयावड पागी, सब आस पुजी जन केरी। जगन्नाथ जगदीशर करते, सब वसगत है हर केरी। जन नानक शरणागत आए, हर राखो पै जन केरी।

था जन नानक गुर के लाले बोले लग संगत करुआ मीठा गौड़ी पूर्वी महला चौथा हर हर अर्थ शरीर हम बेचिया पूरे गुर के आगे सत गुरदाते नाम दिड़ाया मुख मस्तक पाग सब आगे राम गुरमत हर लिव लागे राम गुरमत हर लिव लागे रहाओ तट कट रमैया रमत राम राये गुर शब्द गुरु लिव लागे हऊ मन तन देवो काट गुरु को मेरा प्रम को गुरु बचनी पागे अंधियारे दीपक आन जलाए गुर ज्ञान गुरु लिव लागे अज्ञान अंधेरा बिनस बिनास्यो कर वस्त लही मन जागे साकत बदक माया तारी तिन जम जोहन लागे उन सतगुर आगे शीस ना बेचिया ओए आवे जाए अपागे हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर हम शरण प्रभु हर मांगे जन नानक की लज पात गुरु है सिर बेचो सतगुर आगे।

राम गुर के बचन हर पाया रहाओ, मेरे हीरे प्रीत राम राय की, गुरु मार्ग पंथ बताया, मेरा जियो पिंड सब

चाया हम अपराध पाप भोकी ने कर दुष्टी चोर चुराया अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर भाया गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाद गुरमत मनुआ गावे बद पागी गुर दर्शन पाया तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे रहाओ हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे हम मल मल तोवे पाम गुरु के जो हर हर कथा सुनावे हृदय गुरमत राम रसायन जिहवा हर गुण गावे मन रसक रसक हर रस आघा

जन नानक कहो हर कृपा तारी, मत गुरमत नाम दृढ़ावे। राग गौड़ी माज महला चौथा, गुरुमुख जिंदु जप नाम करम्मा, मत माता मत जियो नाम मुख रामा। संतोख पिता कर गुर पुरख अजन्मा, वड पागी मिल रामा। गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो। वड पागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, मेरा मन तन हर रंग पिन्ना। आवो संतो मिल नाम जपाहा, रिच संगत नाम सदा लैलाहा जियो। कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो, मिल पूरब लिखियड़े तुर कर्मा। सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया। हर अमृत उठड़ा।

करी हाजियो मिल संत जना रंग माने रलिया जियो गुर दीपक ज्ञान सदा मन गलिया जियो हर तुठे टुल टुल मिलिया जियो मेरे मन तन प्रेम लगा हर टोले।

मन अनदिन अनद्रस जियो, हर पायणा वद पागई मेरे गोविंदा, नित लैला हा मन हस जियो। हर आप उपाय हर आपे देखे, हर आपे कार लाया जियो। इक खावे बस तोट ना आवे, इक ना फक्का पाया जियो। इक राजे तख्त बहे निक सुखिए, इक ना भिख मंगाया जियो। सब इको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा, जन नानक नाम ते आया जियो। गौरी माज महला चौथा, मन माही मेरे गोविंदा, हर रंग रता मन माही जियो। हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा, गुरपुरा अलख लखाही जियो। हर हर नाम परदास।

मेरा हर प्रभु सज्जन सैनी जियो हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा मैं सुख विहानी रहनी जियो मैं मिलो संत मेरा हर प्रभु सज्जन मैं मन तन भुख लगाया जियो हूँ रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम मैं अंतर बिरहो हर लाया जियो हर लाया मेरा सज्जन प्यारा गुर मेले मेरा मन जीवाया जियो मेरे मन तन आशा।

भगता नाम आधार है मेरे गोविंदा, हर कथा मंगे हर चंगी जियो। हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा, हर भगता लोच मन पूरी जियो। आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा, रब रहा नहीं दूरी जियो। हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा, हर आप रहा पर पूरी जियो। हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा, हर वेखे आप अधूरी जियो। हर अंतरवाजा कौन है मेरे गोविंदा, हर आप बजाए त्यों वाजे जियो। हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा, गुर सबदी हर प्रभ गाजे जियो। आपे शरण पवाएंदा मेरे गोविंदा, हर भगत जना राख लाजे जियो। वडभागी मिल संगती मेरे गोविंदा, जन नानक नाम सिदका जय जियो। गौड़ी माज महला चौथा, मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जियो। मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो, हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो। मेरा नाम सखा हर पाई जियो, गुण गावो संत जियो। मेरे हर प्रभ केरे जियो, जप गुरमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो। हर हर नाम जियो प्राण हर मेरे जियो, फिर बहुड़ न पव जल फेरे जियो। क्यों हर प्रभु वेखा मेरे मन तन चाओ जियो। हर मिलो संत जियो मन लगा पाओ जियो, गुर सबदी पाये हर प्रीतम राओ जियो। वड पागी जप नाओ जियो, मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो। हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभ पासा जियो, सतगुर मत नाम।

वाजियो मन अंदर अमृत गुरमत हर मुनिवाजियो मन हर रंग रत्ना हर रस सदा पीवाजियो हर पायड़ा मन जीवा जियो मेरे मन तन प्रेम लगा हर बाण जियो मेरा प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो गुरु मेले संत हर सुगड़ सुजान जियो हौ नाम विटो कुर्बान जियो हौ नाम विटो कुर्बान जियो हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो हर दसो संतो जी हर खोज पवाई जियो सतगुर तुठड़ा दसे हर पाई जियो हर नामे नाम समाई जियो मैं वेदन प्रेम हर बिरहों लगाई जियो गुर सरदा पूर अमृत मुख पाई जियो हर हो दयाल हर नाम त्याई।